मुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुरबचन त्याया, पवित्र परम पद पाया, अनहद धुन वाजे है नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाता, ज्योति ज्योत समाणी, मन मुखा मन मुख मुए, मेरी कर माया राम, खिन आवे खिन जावे, दुर्गंध मड़े चित लाया राम, लाया दुर्गंध मड़े चित लागा, ज्यों रंग कसुंब दिखाया, खिन पूरब खिन पच्छम शाए, ज्यों चक कुम्हार पवाया, दुख खावे हैं दुख संचह भोग हैं, दुख की बिरद वधाई, नानक बिकम

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भारती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

सिद्ध कार्य सब सोहाए राम, रोमे रोम रोम रोमे, मैं गुरमुख राम त्याए राम, राम नाम त्याए पवे।

तमो रमय उच्चा गुण कहत्या अंत ना पाया। नानक राम नाम सुन पीने रामह नाम सुमाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया। राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदया सो फल पाया। राम मन चिंदया फल पाया राम नाम ते आया। राम नाम गुण गाई दुर्मत कुबुद्ध गई सुध हुई। राम नाम मन लाई सफल जन्म शरीर सब होआ। जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती। गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया। राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम अवर ना पाया। राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

राम सते सत गुरमुख जानिया राम सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम मन तने अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मलाए।

सारे गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगाह पावे मान जियो। सत जुग सब संतोख सरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। तेता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए दियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए दियो। मन हृदय क्रोध महा बिसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। जोग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है, अत किरिया कर्म कमाए जियो। किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए जियो। महाजुद जोद बहु कीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सत गुर मल लह जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी काने उपाए दियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कड ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते।

को होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया, जन उमरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरना होई, हर हर नाम अमृत।

जियो जग उपजै बिनसै बिनस बनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो ता की गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो गोविंद अलख अप

अगमय अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहया समाए जियो। काटे अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत ना पाया तिस रूप नरेख अदिष्ट अगोचर गुरमुख अलख लखाया। सदा आनंद रह दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। तुदे आपे भावै तिवें चलावह सब तेरे शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जां तुद भावै तेरे शब्द वडियाई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए। शब्दे रहया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए।

मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पेरा मुकी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा। मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनंत तरंगा। मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा। दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी। हौ मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया। भगत वच्छल हर बिरद है।

वाहिगुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली गुरमुख प्यारे।

आई। आसा महला चौथा, इन मस्तक तुर हर लिखिया, इन्ना सतगुर मिलिया राम राजी, अज्ञान अंधेरा कट।

जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराई। कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर,

मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल पाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया।

जन नानक हर हर हुआ, हर हर मन उठा, आसा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु।

करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे चातरक बूंद जिवें मन

उते फिर बाजड़े हो मेरे प्यारे आंगन धूड़ लुते मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे दोए नैन जुते गुरु नानक।

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर तुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेलसा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा।

भया गृहवास आया मंगल गाया पांच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणी साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियों मन मानिया।

सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर

सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुर मिल जीता राम गुर मिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना सानथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रभ

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप।

नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा तारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर धूड़ी नाइय मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर सरण तरिये अपने प्रभ पावा आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदया किसियान न मीठा राम राजे मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुण निद गाया सब दुख मटाया हऊ मैं बिनसी गांठे प्रियो सहज सुपाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा ज्यों राती जल माछुले त्यों राम रस माते राम राजे गुर पूरै उपदेसिया जीवन

जल संग राती माछली नानक हर माते चातरक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना।

ताठी पीत परम की भेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माध अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे

जम पंथ भणीऐ कह साध संग ना डरपीऐ कर कीरत गोविंद गुणीऐ सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यों ने हो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करीजै इहो मन दीजै हथ लाइए चित

हा कहो नानक संत अनंत ठाकुर के हरसियों की जय नेहा मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चित व्यास घनी कद दिन यर देखी है गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजी है हर प्रीत करीजै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया अब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो कीती है कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिन यर देखी है निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत कीजै जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी तेरे अपना पाया रंग लाल बनाया।

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माही। संत जा को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे। ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी, जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना। कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन, मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझ अराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार, संकर जटा तार। चाह है तुझ दयार, मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर, सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है, जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा, जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक, साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है, लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है, पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है, वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी, सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद, खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल, नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर, सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता, नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया, ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए, शीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवां सलोक, उदम करो वडभागी हो। सिमरो हर हर राय, नानक जिस सिमरत सब सुख होवै है। दुख दर्द भ्रम जाए, संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई। भेटत साधु संग, जमपुर नह जाई। दुख दर्द ना पौ ब्यापै, नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर, त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध, कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै, नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनाश ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल तल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दै वसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उधरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार, नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोज।

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जंपै भगत वचल हर बिरद आप बनाया हासा महला पंजवा थिर संतन सुहाग मरे ना जावे जा कै ग्रह हर ना हो सो सद ही रावे अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नवनिद तित ग्रह नहीं ऊना सब कशु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुरबचन जाने जा को राम पतार ता कै आनंद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामो शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया, समर्थ अगत अपार निर्मल।

कीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल धर्म कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

ते संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगमते आयो बहु परदेसह तायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीक उधारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

महल्ला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरपव पये पराण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रहे अगन सागर पये सीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरलै किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त समानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रहनड़ी है चाम कन तारी, जाग है संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जाग है, नाम सिमर है अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। ताज मान मोह बिकार मन का, कलमला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जाग है, हर दास संत प्यारी। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखगामी, चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे, प्राण मन तन सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ ते आई, संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सखियां पुछ है कहो कंत नीचाणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी, गुण गूढ़ गुप्त अपार करते, निगम अंत ना पावहे, भगत पाए ते आए स्वामी, सदा हर गुण गावहे। सगल गुण सुगयान पूरन, अपने प्रभ पाणी, बिनवंत नानक रंग राती, प्रेम सहज समाणी। सुख सोहिलड़े हर गावन लागे, साजन सरस अड़े दुख दुश्मन भागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते, प्रभ आप कृपा धारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल निद प्रभ पागे, बिनवंत नानक सरण स्वामी, सदा हर जन तागे। हासा महला पंजवा, उठ मंज वटाउड़िया, तैं क्या चिर लाया, मुहलत पुन्नड़िया, कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया, करहें पाप अमित्या, तन पसम टेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जितया, माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया, नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया, हाथ हो मिर्ग जिवें, पेख रहन चंद्रायन, सुख हो दुख पए, नित पाप कमायन, पापा कमाने छड़ह नाही, लै चले कत गलावया, हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन, नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी, तरण देह ला पया खिन मह, खसम चेतना।

दृष्ट सचंती बिनवंत नानक मेरी इच्छ पुनी मिले जिस खोजंती नस मंजो हो किल विखो हो करता घर आया दूत है दहन भया गोविंद प्रगटाया।

धर्म करे दूत भय पलायन। धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे। कर अनग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे। गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण। बिनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण। निध सिद चरण गहे तां केहा काड़ा। सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा। गह पुजा लीने नाम दीने कर धार मस्तक राखिया। संसार सागर नह व्यापै अम्यों हर रस चाखिया। साज संगे नाम रंगे

आयो माथे जिस पास लकाइंदड़ो सो वेखी साथे संग देखे करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट हैं दोख कमाते वलवंच कर उदर पर हैं मूर्ख गावारा सब किश दे रहे।

ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल मही अल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किस नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरैन संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड़।

पाद कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा लेवो नाम देवो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग।

खाणी, विस्माद धरती विस्माद खाणी, विस्माद साद लगे है पराणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग, विस्माद भुख विस्माद भोग, विस्माद सिफत विस्माद सलाह, विस्माद उजड़ विस्माद राह, विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद देख हाजरा हजूर, वेख वडान रहया विस्माद, नानक बुझण पूरे भाग, महला पहला, कुदरत दिसे कुदरत सुनिए, कुदरत पौ सुख सार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत

कुदरत जाति जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत।

पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जित तन पाई है नानका से तन हो है शार ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाई है

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हूं लोक सबाया। सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया सलोक।

संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्तै ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला वाइन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा।

कोलू चरखा चक्की चक, थल वारोले बहुत अनंत, लाटू मादानिया अनगाह, पंखी पौंदिया लैन ना साह, सूए चाड़ पवाई यह जंत, नानक पौंदिया गणत ना अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचै सब कोए, नच नच हसह चलह से रोए, उड ना जाही सिद्ध ना होहे, नचन कुदन मन का चाऊ, नानक जिन मन पाओ किन्ना मन पाओ पौड़ी, नाओ तेरा निरंकार है, नाए लय नरक ना जाइए, जियो पिंड सब तिसदा, देखा जय आख गुआई है, जे लोड़ है चंगा अपना, कर पुन्नो नीच सदाई है, जे जरवाना पर हर है, जर वेस करें दी आई है, को रह ना परिये पाईये, सलोक महला पहला, मुसलमाना सिफत सरयत।

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया।

तहों उपजे कित संजम एह जाय हमें एहो हुक्म है पय किरत फराहे हमें दीर्घ रोग है।

नानक कह सुनहु जनहु हित संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदै पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै सच वसाया,

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो।

विद्या, योग शब्दं ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं, सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं, जे को जाने पे ओ नानकता का दास है, सोई निरंजन देव महला दूजा, एक कृष्णं।

गुनाहगार ता उमी साधना मारी है जेहा खाले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है पढ़िया अते उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाहु त्रेत रथ जतै का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाह। महला पहला शाम कह से तंबर स्वामी सच में आछ साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर नाए लये परास्त जाहे नानक तौ मुखंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंदरा बन मह रंग किया कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लुह भया।

संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जने उजी का थई ता पांडे घत ना एहो टुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए धन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौंकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मोआ ओह झड़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल तग कपाहो कतिया बामन वटे आए ओहे बकरा रिन खाया सबको आख पाए होए पुराणा सुटिया पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होए जोर महला पहला नाए मन्ने पति उपजै साला ही सच सूत दरगाह अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी भलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेहवा तग ना अखी वे तगाया पे बत्ते वट तागे अवरा।

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ै कतेबा संजम तुरका भाई।

काग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साद कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडोहो वड्डा वड मेजनी सिरे सिर तंदै लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहै कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोय नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सभो सूतक भरम है।

तेता जित मुख नाम ना उचरह बिन नामे रस खाहे नानक एवें जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला पांड जमीए पांड निमीए पांड मंगन वे आह पंडो होए दोस्ती पंडो चले राह पांड मोआ पांड पालिए पांड होए बंदान सो क्यों मंदा आखिए है जित जम है राजान पंडो ही पांड उपजे पंडै बाज ना कोई नानक पंडै बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चै दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गारब हंडी है मंदा किसे ना आखी है पढ़ अखर एहो बुझी है मूर्ख है लाल ना लुझी है सलोक महला पहला नानक फिक्के बोले है तन मन फिक्का होए फिक्को फिक्का सदी है फिक्के फिक्की सोए फिक्का दरगाह सटी है मुहे तुका फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखी है पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरै नाही मैल जिन पाके अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन नेहु लगा रब सेती देखने विचार रंग हसह रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

तै धारी है, देख है कीता अपना, तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनु विसारी है, अपना

नाल आने दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगा

जो पाई है नानक सा करमात साहिब तुठ है जो मिले महला दूजा एक ने ही चाकरी जित पौ खसम ना जाए नानक सेवक कहडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत ना जापनी।

यार आप कराए करे आप हौ कैस्यो करी पकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरन दे इकनी दुध समाई है एक चुल्ला रहन चढ़े एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े।

कियो गुरु चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो जित

माया पास बंद नहीं फारे, हर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपियो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा, उदय अष्ट की मन बुद्ध नासी, तौ सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तौ मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ निबग, वे हर के संत।

चरावे ऊपर काठी धोए जलावे बसदा खोद करह दोए चूले सारे मानस खावे वे पापी सदा फिर है अपराधी मुखों अपरस कहावे है सदा सदा फिर है अभमानी सगल कुटंब डुबावे है जित को लाया तित ही लागा तैसे कर्म कमावे कहो कबीर जिस सतगुर भेटै पुनरप जन्म न आवे आसा।

आ मेरा मन पाया हम पूत तेरा तू बाप मेरा एक ठाहर दोहां बसेरा कहो कबीर जन एको बूझिया गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट इकत पत्र पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी कोठन गन बाडाडू किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलियां की हो।

आओ आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे

आवे, घर घर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया फहरी काया कर तुई

कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपरा।

अखंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया तां पी चीत ना राखस माया। चिंत भवन मन

सलाम, कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुरक दो समझावो, आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ, जिस पाहन को पा

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना हम

गुर प्रसादी हर धन पायो अंते चलदिया नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संत हो अन तन कछुए लै ना गयो आई तलब गोपाल।

ऐहर खवाद ना की जय रे मन, सो कृत कर कर ली जय रे मन रहाउ। कुमार है एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। सुमह धन राखण को दिया, मुग्ध कह धन मेरा, जम का दंड मूंड मह लागे, किन मह करे निवेरा। हर जाने उत्तम भगत सदावे, आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावे सत

चरण रहे कर धरक परे हैं, मुखो नानक सह बाता, थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते, थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत धर रमते, मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे, आसा एक टुके चार, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिष्णु महादेव छलिया, मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रे भवन दसियले, गुर प्रसाद दीठी रहाओ, सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई, जिन साच पछान्या।

चराए, कहें बिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुआन सब करे कराया, जो तुर लिखिया।

हे रावण कर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, ते रावण कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरम

राम रमत तिस सब किश सूजै, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे आठ, दो तुके सत, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकरै, तब है काहे रोया, जीव न की आस करह, जम नेहा

आओ नाब कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो अस वड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

राई माया सदमतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांदिया मैं राम रमत सुख पाया।

गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब

तार चिरायु कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सौ मोहर त्याना आसा, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमान साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जै पासना देखै आग, काल पासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई, तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ, काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूट।

मैं तेरा सोच विचार ना देख खबर ना कर है दीन के बौरे ता ते जन्म अलेख है रहाव साचक ते बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीतर।

फिर हों हर की बहुरिया राम बड़े मैं तनक लहरिया रहाओ। धन फिर एकै संग बसेरा सेज एक पै मिलन दुहेरा। धन

होके दुपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हीरे हीरा बेद पवन मन, सहजे रहे आसमाई, सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी,

गुप्त ही राह प्रगट भयो जब गुरगम दिया दिखाई आसा पहली कुरूप कुजात कुलखनी सहरे पिये बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और तरियो आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम रमऊआ लावा।

रहु रहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाउ। घूंघट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए कूद।

जाना सब जग अनत नायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ लावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर जोनी आवह मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसे पूत पूत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग हर फेन बुद बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचर ध्यान न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी। घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी। हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करू। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं। ईबे बीठल ऊबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्वमही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी। कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

अपना खसम त्यागो सोने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साफ कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे कोटी जै ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जाने।

आदि मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है ता की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही आसा तुम चंदन हम ए रंड बापरे संगत मारे बासा नीच रूख ते ऊच भये हैं गंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत सरन तुम्हारी हम योगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया धन रहाओ संपत विपत पटल माया धन ता मह मगन होत ना।

आसा हर हर हर हर हर हर हरि हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाउ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमित नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुत्रा कैसे नचत है देख देख सुन बोले दौर्यो फिरत है रहाउ जब कश पावे तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना

धन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रमत फिरत बहु जन्म बिलानी तन मन धन नहीं धीरे लालच बिख काम लुभ धराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया ध्यान मान मन एकमय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त भये जोत समाए समानी जाके अशली प्रभ पहचानिया तन्ने तन पाया तरनी तर मिल जन संत।

मन पीरिया, कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया, सेख हयाती जागना कोई थिर रहिया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, कत्तक कूंजा चेत डौ सावन बिजुलियां, से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां, चले चलन हार बचारा ले मनो, गाडेंदियां छे माह तुड़ंदियां हिक खिनो, जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए, जालन गोरा नाल उलामे जी सहे।

आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाव राव सस दीपक जा के त्रे भवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मन मुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेर अंतर ज्योत शब्द धुन जागे सतगुर झगर नबेरे सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागै हर नाम मेरा मन तृप्त है।

जाई। हर मेरा धन मेरा साथ चाले, जहां हो जाऊं तह जाई। सो झूठा जो झूठे लागे, झूठे कर्म कमाई। कह नानक हर का पाणा हुआ, कहना कछु न जाई। गुजरी

गुर अपने सद बलिहार जाऊं। सतगुर मिले हर मन वसे सहजी रह समाई रहाउ। जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई। बैराग ते हर पाईए हर स्यों रह समाई। से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आई। दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई। नानक गुर ते गुर होया

या राम राम सबको कहे कहे राम ना होए। गुर प्रसादी राम मन वसे ता फल पावे कोई। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हर तिस कदे ना विसरे। हर हर करहे सदा मन चीत रहाओ। हृदय जिन कै कपट वसे बाहर हूं संत कहाहे। तृष्णा मूल ना चुकई अंत गए पछताहे। अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की हम मैं कदे ना जाए। जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राये तिस देश जाए। कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई। नानक विचों हम मैं मारे ता हर भेटै सोई। गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल। जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल। जे गुरमुख बूझे हर चरणी चित लाए। हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई। गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह सदा सुख होई। रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए। पारस होए ता पूज कराए। जो उस पूजे सो फल पाए। दीखिया देवे साच बुझाए। बिन पारस पूज ना हो वई। बिन मन परचे अवरा समझाए। गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए। नानक बिन नदरी किछु ना पाई है। जिस नदर करे सो पाए। गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजे ना कांसी मत जाए। सतगुर मिले मत उपजे ता

फिर रह ता भरम बिचों जाय रहाउ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताई एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाए हथ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदय रहे आसमाय नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आय जो तुद भावे सब सच है सच्चे रहे समाय गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाई जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिछना भूख ना होए नाम निधान पाया पर कर जाए ना कोई कथनी बदनी जे करे मन

सिखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख साध।

गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देवो दान हर प्राण जिवाया। हम हो वह लाले गोले गुरसिखा के, जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई। मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ। जा हर प्रभ पावै ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। बड भागी गुर के सिख प्यारी, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी, हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

कथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया होवा वड भागी हर नाम ते

तेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव। धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे। अमृत बचन

नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे जन नानक।

माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कहो संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ। भगत जना कौ श्रद्धा आप हर लाई, विचे गृहस्थ उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करह जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवां चौपदे कर पहला, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवह उदम, जा आहार हर जियो परया। सैल पत्थर मह जनते उपाय, ता कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई ना किसकी तरिया, सिर सिर

शरिया उन कवन खिलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा बरिया गुजरी महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

आवे। हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किल विखनास है पितरी होए उदारू। सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाओ। सतगुरु तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो

काटी काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याध ते हाटी हर जस साध संग मिल गायु गुर प्रसाद पयु मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायु रहाउ जो कछ कियो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर।

सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे।

नाम तुम्हारू सगल श्रेष्ठ को तनी की ही जय जन को अंग नरारू रहाऊ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारू नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरो मुक्त भयो चमियारू गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारू जान कमन पता शिव ब्रंच अर सगल मोन जन गह ना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझी।

पंजवां मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

तिस गुर बलिहारी, जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा, मात पिता भाई सुत बंदक, तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे, किस साथ न चाले पूरा। ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोहरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही। मैं आहे हो तुमरा तुरा रहाओ, बल बल बल बल चरण तुम।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल भ्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटे है माया बंद बिसरना कबहू जाई।

कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभु को सदा सलाही रहाउ। सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पई करते की और आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निसे अर भोर।

ते ताई साध संगत को जोहे न साके मल मल धोए पाए अब मोहे आए परयो सरनाय गोहज पाप को बहुत परजारे मोको सतगुरु दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किनर नर।

आप जस मिटै हुआ जग कीरत दरगाह बैसन पाई है जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाई है जाते काल न बिरथी जाई है आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्याय रहाउ मोहे सरन दीन दुख भजन।

सर्ब सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करतै गुर पूरे की वडियाई।

मिथ्या भज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण समर्थ श्री धर सरणता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियान।

चरण कमल आराध, सर्व सुख कल्याण पावह, मिटै सगल उपाद रहाउ, मात पिता सुत मीत भाई, किस बिना नहीं कोई, ईत ऊत जी नाल संगी, सर्व रविया सोए, कोट जतन अपाव मिथ्या, कछ न आवै काम, शरण साधु निर्मला,

महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महावीर गरोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण योग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्य आसा कूकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

भगत गोपाल सिमरन मिटत जूनी भवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कतह नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ की दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवां घर चौथा दोपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परिउ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केतो हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरा ओह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै।

काम क्रोध अहंकार तजियले, लोभ मोह तिस माया, मन तत अवगत त्याया, गुर प्रसादी पाया, ज्ञान ध्यान सब दात कथियले।

सर्वदृष्ट लोचन अभयंतर एकानदर सोत्रे पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाचे हैं प्रभ नायक दीन दे तोट नाही पंडार ऊंदे भांडे कछ ना समावे सिद्ध अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए मन अंतर

जहे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजै प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगै।

गत पत पाई पाई रे राम नाम चित लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाची ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ ऐ जी बहुते भीख करह भिखिया को एते उदर भरन कह ताई बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन

जिन्ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐजी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

है ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे है जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके ज्यो बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई है जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ।

बंदव पतत पावन देव तै त्रास नास कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहा।

बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

नानक हुक्म बुझ परवान होए ता फल पावे सच कतनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया ब्रह्मा बिशन महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर भावे सतगुर कै भाणे वडियाई पावे नानक आप छोड़ गुर माहे समावे महला तीजा गुर की सिख को विरला लेवे नानक जिसे आप वडियाई देवे पौड़ी माया मोह अज्ञान है बिखम अत भारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी अन दिन भगती रत्या हर पार उतारी गुर शब्दी मन निर्मला हूं मैं छट बेकारी हर हर नाम ते आई है हर

आई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वारा आत्मिका नाना हुए सो जाए। हम मन असथूल है क्यों कर विच दे जाए, सतगुर मिले है हम गई जोत रही सब आई। इहो जियो सदा मुक्त है सहजी रहया समाई। पौड़ी

वस्यो मन आई त्रिक अवेहा जीव्या क्या जुग मह पाया आय माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सो तन।

आए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रहे हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाय कितै ना पाईऐ। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए। इस नूं कूड़ बोल के खवाली है,

सतगुरु की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाई है विचों आप गवाई कृष्णा भुख विचों उतरे सुख वसे मन आई सदा सदा सलाही है हिरदय लिवलाई सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाऊ है हर नाम प्राप्त होए अंतर सीतल शांत वसे जप हिरदय सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पाव है गुणी निदान हर सुख दाता मन वसे हौ मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई है तायन दिन लागे ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट वकार गया मन सहजे जिता तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता अन दिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता सबना दाता एक है इको हर मिता सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अन दिन हर लिवलाए

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मरमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजे नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै।

काम क्रोध अहंकारा एह जम की सिरकार है। इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन जिन दूजा भाव प्यारा जमपुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा जिसनों कृपा करे तिस गुर मिले

आए गुर कै शब्द पर जालीऐ तां एह विचों जाए तन मन होवै उजला नाम वसै मन आए नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा इहो मन के तड़िया जुग भरमिया फिर रह न आवै जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाय जां हर बख्शे ता गुर मिलै अस्थिर रह समाई नानक मन ही

रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम त्याई है लह जाहे वजोगी।

कर्म प्राप्त हुए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागिया वाह वाह मुंह कढ़ाई, वाह वाह करह सही जन सोहने, तिन कौ परजा पूजन आई। वाह वाह कर्म प्राप्त हुए, नानक दर सच्चै शोभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभमानी, भरम भूले नदर ना आवनी। मन मुखिया दे अज्ञानी, उपाय कितै ना लभनी। कर भेख थके भेखवानी, गुर शब्दी खोलाइयन हर नाम जपानी। हर जियो अमृत बिरख है, जिन पिया ते तृपतानी।

का नाम। जिन सेविया तिन फल पाया थौ तिन बलिहारे जाओ। वाहु वाहु गुणी निदान है जिसनो दे सो खाए। वाहु वाहु जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाहु वाहु गुरसिख नित सब करहु गुरपूरे। वाहु वाहु पावे नानक। वाहु वाहु जो मन चित करे तिस

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाई पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो। बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहे। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाउ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै होवे वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ आप

मतवन्य मित्र असाढ़े से कांट ने दी जाग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भौ कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यों लाइन रंग जिस दी सब धारिया ऊची हूं ऊचा स्थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। सलोक महला पंजवा बार वडानड़ हुमस थुमस कूका पंजा राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक आनंद सेती बन गाही। महला पंजवा सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपी है नाव तिन संग संग ना कीचई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निश्चल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर ना खोटिया। सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभू सच महला।

अड लहब को पौड़ी तेरे कीते काम तुदैही गोचरे सोई वरतै जग जे किया तुद तुरे विषम भय।

तै सह दित्ती वाड़, नानक खेत ना सिजई पौड़ी, अराध्य हो सच्चा सोए सब किश जिस पास, दोहां सिरियां खसम आप किन मैं करे रास, त्याग हो सगल अपाव तिसकी ओट गहो, पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो, कर्म धर्म तत् ज्ञान संतां संग होए, जपिए अमृत नाम बिघन ना लगे कोई, जिसनो आप दयाल किस मन गुठिया, पाइन सब निदान।

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमोह बड़भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

कही ना जाए। गुर समरथ देव गुरपार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। सलोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू, कमाम दिया सुख पुंच, त्याए दिया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी। कर कृपा भगवंत पौड़ी, तेरा कीता हुए ता काहे डरपीऐ। जिस मिल जपिया नाओ तिस जियो अर्पिया। आया चित निहाल साहिब बेशुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल नंकार। सब किस तिस कै वासना कोई बाहरा, सो भगता मन बुठा सच समाहरा। तेरे दास ध्यान तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुरमत धोवना।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर का।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाऊ ज्यो अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई ज्यो

भस्म लगाई गुरबिन तत ना पाया। काए जपोहरे काए तपोहरे काए बलोह पाणी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरोह निर्वाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन वल वल औतरै हरी बाई गोविंद।

लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै तू कर जोन वल वल अवतरै अंतकार जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

पुरुख मनोपिमं सत आद भाव रतं परमद भुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं वद अमृत तत्मयं नाद नोत जसमरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाउ इस जमाद परापयं जस स्वस्थ सोकृत कृतं पाव पूत भाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लुबाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्कर धर सरण हर भगत निज नेह।

ठाकुर लिव लागे। जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे। रहाव टूटे माया के बंधन फाहे। हर राम नाम लिव लागे। हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम भई मुख लागे। सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे। जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली। हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली। रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे। यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पाई। ओह सुंदर हर ढोल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की। जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा। हर भावे तित राहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है। गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है। रहाव हों फिरो दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है। कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुल गोली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी झोली है। गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देहे टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पहार।

अंतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार, देव गंधारी, हर गुण गावे हो तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन तुम्हारी, देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नकती, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है तरक्ती रहाओ, जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ती, ज्यों नुगुरा बहु बातां जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पातै शुक्ति, छका एक, देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चित लाई है।

0: एक समाई है काटे अव घट रव्या सब ठाई हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है उस्तत करह सेवक मुन केते तेरा अंत न कतहु पाई है सुख दाते दुख भंजन स्वामी जन नानक सद बल जाई है देव गंधारी
1: माई होनहार सो होई है
0: राच रहे हो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहाओ कह फूल है आनंद बिखै सोग कब हसनो कब रोई है कब हूं मैल भरे अभमानी कब साधु संग धोई है कोई न मेटै प्रभ का किया दूसर नाही अलोई है कहो नानक तिस गुर बलिहारी जेह प्रसाद सुख सोई है देव गंधारी माई सुनत सोच।

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हौ अनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भाव नीच हो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलाव रहाव अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है शोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े।

बदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बसारियो, माया बंद काटे कृपा निध, नानक आप उधारियो, देव गंधारी मन सगल सियान परही, करन कराम नहार स्वामी, नानक ओट गही रहाउ, आप मेट पए सरनाई, एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, परम अंधेरा लही।

नित हेरै अंध बिलाते काढ़ो करते क्या नाही करते रह नाम आधार दीजै नानक कहो आनंद सुख कनेरै सके दो देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भादेव रहा कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाव भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अन ग्रहो मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ लादेव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताकू पार।

हर चरनी लागो तिस प्रभ अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर ते सरन स्वामी की अही है कोट पराध महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस सरन ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनाते उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विकनाश हैं

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन में है इहो सुख धारो गुण गावे है ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारू नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उर धारो देव गंधारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखों दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान धार दिन रहनी।

तार हाउ बैकत हर हर सूवत हर हर हर रस पूजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनू साधु धूरी नाता सफल जन्म।

काल दयाल दुख भंजन, मेरा सगल अनेतरा गया रहाउ। हम पापी पाखंडी लोभी, हमरा गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक धार साज निवाजे, मुए दुष्ट जो फया। पर उपकारी सर्ब सधारी, सफल दर्शन सह जया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता, चरण कमल उर धरिया।

जब कितवो तब तुहारी उन समहार मेरा मन साधारी सुन गावो गुरबचनारी बल बल जाऊं साध दरसारी मन मैं राखो एक असारी नानक प्रभ मेरे करने हारी देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोर

सकल दुराख्य देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तोहारी अत सुंदर मन मोहन प्यारी सब हूँ मद निरारी रहाउ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारी।

तरन परियो संत हारिए, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारी। देव गंधारी महला पंजवा, हर जप सेवक पार उतारियो, दीन दयाल भये प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारियो, प्रभ गुण गाए बिखै बन तरिया, कुल है समूह उधारियो। चरण कमल बसिया रिद पीतर, तास ग्रास उचारियो, नानक उठ गही जगदीश, पुनः पुनः बलिहारियो।

देख मोहन रहत निरार रहाव, कथन सुनावन गीत नीके गावन, मन में धरते गार, अत सुंदर बहु चतुर सियानी।

नाम लिय कत पाइया मन रूचा खोज असंखा अनकत पंथा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंधारी महला पंजवा मैं बहु विद पेख्यो दूजा नाही री को खंड दीप सब पीतर रविया।

चार बरन्ना मुक्त भये सेव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर सेवा।

रहाउ काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रवियारे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मजार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताज अभमान।

प्राण आधार समर्थ अथाह बड़ा प्रभ मेरा घट घट अंतर साहिब नेरा ताकि शरण आसर प्रभ नानक।

छुटकी रे मन छुटकी रे, काकत संग ना छुटकी रे रहाओ। ज्यो काजर भर मंदर राखियो, जो पैसा कालू की रे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे, मांगो दान कृपाल कृपा ने।

अपुयंगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंद है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपि पाच हारिए अर बहु लोग सियाने रहाव तिन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी

राम। मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम। हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम। हर बिन शांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

जिंदड़िए करवाजे शब्द कने हे राम मनमुख हूं मैं विछड़े मेरी जिंदड़िए बिक बाधे हूं मैं जाले राम ज्यों पंखी कपोत आप बनाया मेरी जिंदड़िए यो मनमुख सब वस काले राम जो मोहे माया।

फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, तिनके सब दुख गवाया राम। अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, जित जपे पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर।

लड़िए भिख पौ जल तारन हारू राम जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए तिन संत जना जय कारू राम नानक हर जप सुख

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देख है राम। ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेख है राम। तिस जन के पग नित पूजिय है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सह राम। नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मने सह राम। धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम। वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम।

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन।

तिनका संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ

जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत कर पहला।

हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगाह सुबा पाईए जिनको बधाते।

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां घर दूजा।

कै चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम कणा, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाईए प्रभ त्याईए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड़ पुरख पूरन गुण संपूर्ण, प्रम पीत हर हर मिल भगे है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपे है, हर नार सुहागनी सब रंग माणी, रांड ना बैसे ही प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बदभागिया, सुख सहज सोवे है, किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उधार नु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तार नु, जो सरन आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक।

करहु निवास मन करमज्जन हर सरी सब किलविख नास मन कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले चिरी विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारु बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारु सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमरथिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइए पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कहन ना जाई राम जिस ते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया।

0: तपत ना कतह बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिये, नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारिये,
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम समरत कारण करना। नानक चातर हर बूंद।

सांग मिले जप पूर्ण काम आराम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मन होना बीसर आनंद अनदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसर अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जाको तामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन मिले श्री रंग रामा कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम हर नाम जपत।

सद मना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा महला।

लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाने दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

बंधन रहस करता किया अपना पावनी कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच याना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन समरथ स्वामी

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई, है हों हों करतना त्रिशन बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी बिनवंत नानक बिन नाम हर के, कीत्या पछताने तार अनग्रहो अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो

गुर कै शब्द मन भेजी है सदा वसै हर नाल नानक नाम तिना कौ मिले जिन हर वेखै नदर निहाल महला तीजा सिफत खजाना बख्श है जिस बख्शै सो खर्चै खाई सतगुर बिन हाथ ना आवई सब थके कर्म कमाई नानक मनमुख जगत धनहीन है अगै भुखा के खाए पौड़ी सब तेरी तू सब सदा सब तुद उपाया सबना विच तू वरतदा तू सबनी त्याया तिस दी तू भगत थाए पाए जो तुद मन पाया जो हर प्रभ भावै सो थीऐ सब कर्म तेरा कराया सलाहे हो हर सबना ते वड्डा जो संत जना की पैज रखदा आया सलोक महला तीजा नानक ज्ञानी जग जीता सब

विचार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखनहारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

तुद जेवड़ होर शरीक होवै ताय आखियै तुद जेवड़ तू है होई जिन तू सेवया तिन सुख पाया।

सब लोई। श्लोक महला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव, शब्द साधना पायो, मन हठ क्या गुण गाय, नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा, अपना आपना पछाणे मूड़ा, अवरां आख दुखाए, मुंडा दी खसलत ना गईया, अंधे विछड़ चोटा खाए, सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, अन दिन सहसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए, काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित

पाए, गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गत मत शब्दे पाए, नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचो आप गवाए पौड़ी, जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी, तिसनों क्यों अंदेसा किसै गल दा लोड़ी है, हर सुखदाता सबना गल्लां का, तिसनों त्याए दया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है, जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है, सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़िए, हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे डिठे, जगत तरिया सब लोड़िए। सलोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए, जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का नाव वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै, हर कै नाए प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत, हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे, जित पावै तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे, हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस, कर वेखै चलत सुभाए।

जगत उपाया करते दान सबना कौ दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सो थिया। श्लोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवह सद साचा अनदिन सहज प्यार सदा आनंद गावह गुण साचे अर्ध उर्ध उर्तार अंतर प्रीतम वसिया तुरक।

0: दिन रह सदा गुण गाय बिन कर्म किन ना पायु
1: भौंक मोए बिल लाय
0: गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आय नानक नदरी पाई आपे लय मलाई पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथै आप भिजै आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजै आप परविरत आप निर्विरती आपे अकथ कथीजै आपे पुन सब आप कराई आप लिप्त वर्तीजै
1: आपे सुख दुख देवै करता
0: आपे बख्श करीजै श्लोक महला तीजा सेखा अंदर हो जोर छड तू पहो कर झल गवाए गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम

बाणी आपे खंडवर भंड करे आप समुंदे आप है सागर आपे ही विच रतन धरे आप लहाए करे जिस कृपा जिसनो गुरमुख करे हरे आपे भौजल आप है बोहिथा आपे खेवट आप तरे आपे करे कराए करता अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए नाम पदार्थ पाईए अचिंत वसै मन आए जन्म मरण दुख कटिए हों मैं ममता जाए उत्तम पदवी पाईए सच्चे रह समाए नानक पूर्व जिन को लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए महला तीजा नाम रत्ता सतगुरु है कल युग बोहित होए गुरमुख होए सो पार पवे जिन्ना अंदर सच्चा सोए नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म

आप खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

लाती जा। एक सतगुर की सेवा करह क्या करी, हर नामे लगे प्यार। नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी

पर बुझे सब आपे, एक थैं आपे करे इयाण, इकना अंदर महल बुलाए, जां आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी।

मन गुड़ सलाहा मंडी पौ मास आहार नानक एहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत किस की धार सत संगत स्यों मिलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बिबाणी आपे नाल गोसत आप उपदेसै आपे

जित हर प्रभ मेरा चेते आवै, हर स्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा, प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए, नानक सतगुर मिले है मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आई पौड़ी, आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अभुल ना भुलै कब ही,

साहिब संभाले हो, साहिब सदा हजूर है, पर मैं के छौड़ कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है, दारू एहो लाए हो, सतगुर का भाणा चित रखो हो, संयम सच्चा ने हो, नानक एथ सुख अंदर रख सी, अगै हर स्यों केल करे हो, पौड़ी आपे भार 18।

पावै, आपे सतगुर मेल सुख देवै, अपना सेवक आप हर पावै, अपनिया सेवका की आप पैज रखै, अपनिया भगता की पैरी पावै, धर्म राय है हर का किया, हर जन सेवक नेड़ ना आवै, जो हर का प्यारा।

सो चेतन होए अज्ञानी अंध कमाए नानक इथे कमावे सो मिले अग्गे पाए जाए महला तीजा।

लाहे ध्याना आपे मोनी वरतदा आपे कथै गियाना कौड़ा किसै ना लगई सबना ही भाना उस्तत वर्ण ना सकी है

साह अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किश हुक्मे आमदा सब किश हुक्मे जाए जे को मूर्ख आप हूं जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनो कृपा करे रजाए महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सब को वसे भेखी जोग ना होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार

मन चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेस करेंदिये मुंडे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाई सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

सतगुरु मलाया पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहा। ब्रह्म वेद बाणी परगासी माया मोह पसारा महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने तामस बहुत अहंकारा। किसन सदा अवतारी रूदा कित लग तरै संसारा गुरमुख ज्ञान रते जोगे अंतर चूकै मोह गुबारा।

देहे शरीर सुख होवै शब्द हर नाय, नाम परमल हृदय रहे आसमाय। नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग।

मन आए परमे भूला फिर संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

दिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौ क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पेर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पेर गुणवंता हौ औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हौ जाए पुछा अपने सतगुर गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए हौ सब वेस करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा सो पिर प्यारा मैं नदर ना देख हौ क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हो शिंगार शिंगारी सो पिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागण जिन पिर रावड़ा सच सवरा हौ जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों पिर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी पिर साचै मैं छोड़ियाड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का इत मार्ग भैने मिलिया आप नड़ा प्रभ नदर कर देखै नानक जोत ज्योति रलिया जो हर प्रभ का मैं दे सनेहा इस मन तन अपना देवा नित पक्खा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम त्यावा गुर सतगुर पासों हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गा

सब कोई लोचै सो वेखै जिस आप वखाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावे सहावी कौन सो वेला जित प्रब मेला रहाव लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है लाख

रतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

रहाओ। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभ दाते जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे

साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरै ना कबहू सीजै। वडभागी गुर पूरा पाइय, गुर कृपा ते प्रभु त्याय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना।

संभाली। जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम प्रम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई,

तार संभाली, मैं निर्गुण कौ रख लेता। हों पई उड़ीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कितै ना लेखा। यो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसैना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, तब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे, किश पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिलया, कर्म होवा तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे, बड़हंस महला पहला, करहो दया तेरा नाम बखाना, सब उपाय आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है, उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, किकना भिख पवाइया, लोभ मोह तुझ पिया मीठा, एत भरम भलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समाना, गावन सुर नर सुगड़ सुजान, सुर नर सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन भावहि, माया मोहे चेतह नाही, अहला जन्म गवावहि, एक मूड मुग्ध।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम त्याए मन

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड भागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर

खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम। खोटे दरगहा सुतियन उभे करन पुकारा राम। उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया। विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया। मन मुख संता नाल वैर कर

त्याखी है और करना किछु ना जाई राम। जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम। ज्यों तिस दी वडियाई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई। जगजीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई। गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई। आप करे किसे आखी है और करना किछु ना जाई।

रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागै रसना राम रबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हऊ मैं मैल परिजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणी, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है दूजे।

कै कोई जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर ना कोई मनमुख अंधा तप तप खपै बिन शब्द शांत ना आई नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खोआई एहो जग जलता देख कै भज पए हर सरनाई राम।

सेवा लागे सेवड़ भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देह बुझाई राम आपे देह बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया कर्म है निज कर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई बड़ा हंस महला चौथा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर

जप हर हर नाम कमल पर गास्ते, हर नाम नमंग निद पाई। हम मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसते।

तह तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हर आपे श्रद्धा लाए मलाए हर आपे आप सुवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हर आपे पुरख निरंजन सोई राम हर आपे मेलै करै सो होई राम जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हर आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा सारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर

सतगुर पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करहें बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम हर हर नाम जिन्नी अरादया तिनके दुख पाप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनदिन सहज समाद हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारु कृपा कर कृपा लेहो उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी विखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो कढ़ावे शब्द पावे अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा
जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम अपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सबासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरै मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई बड़ा

राम जाड़ हर हर नाम रतन्ना राम जाड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सुख घने गुर शब्द पाया हर नाम त्याया बड़भागी हर रंग हर बाणी हर मिले स्वामी अंतर जामी हर नव तन हर नव रंगिया नानक बखाने नाम जाने हर नाम हर प्रभ मंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सो है हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह घोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपहाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस महा

0: तुद सलाही।
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया,
0: बख्श लिया खिन माही। नौ निद पाई बजी वधाई, वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया। मेरे लाथे जी सगल वसूरे, सलोक क्या सुनेंदो कूड़, वंजन पवन चलारिया। नानक सुनियर ते परवान, जो सुनेंदे सच धनी चंत, तिन घोल कमाई। जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम, से सहज सुहेले। जिन हर हर रसना भणिया राम, से सहज सुहेले। गुण अमोले जगत उदारने आए, भय बोहित सागर प्रभ चरणा, केते पार लंघाए। जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर, तिनका लेखा ना गणिया। कहो नानक तिन कोल कमाई, जिन प्रभ श्रवणी सुनिया। सलोक लोइन लोई डिठ, प्यास ना बुझै मूह घणी। नानक से अखड़िया बेअन।

धाने से परधाने हर सेती रंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा इनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अमयो बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरने आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पहर हर त्याईये राम मन इच्छे अड़ा फल पाईये राम मन इच्छ पाईये प्रभ त्याईये मिट है जम के त्रासा गोविंद गाया साध संगाया पई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाईए बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याईए दरवाजे है अनहत वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण बेअंत किस कहन ना जाई कोई ना सकै पहुंचा आप अपाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख नाम भगती दर वजह है अनहद वाजे राग बड़ा हंस महला पहला घर पंजवा अलाहनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंदे लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा घत चलाया जानी घत चलाया लिखया आया।

पुरबकमाया धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंद लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इत धंदा कूड़ा चार देह आगै सर पर जाण आगै सर पर जाना ज्यों मेहमान काहे गार्ग कीजै जित सेवै दरगहा सुख पाइय नाम तिसै का लीजै आगै हुक्म न

तारेवा रोवै माया मुठड़ी धंधड़ा रोवण हारेवा धंधा रोवै मैल ना धोवै सुपनंतर संसारू ज्यो बाजी गर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरै राखी नानक सहज सुपहाई वड़हंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

शब्द जलाए औगण शब्द जलाए दूजा भाव गवाए सच्चे ही सच राती सच्चा शब्द सदा सुख पाया हम मैं गई परांति फिर निर्मायल सदा सुख दाता नानक शब्द मलाए फिर हम छुनिया भी मिल है जे सतगुर लाग है साचे पाए।

समाय जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप

मिली ता सहज मिली, पिर राखिया उर धारी, सदा उर धारी निहो नाल प्यारी। सतगुर ते पिर दिसै माया मोह का कच्चा चोला, तित पेंदै पग खिसै, पिर रंग राता सो सच्चा।

प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे मैं सदा रावे फिरे अपना सचड़ै शब्द विचारे सच्चा शब्द विचारे रंग राती नारे मिल सतगुर प्रीतम पाया अंतर रंग राती सहजे माती गया दुश्मन दुख सबाया अपने गुर कौ तन मन दीजै ता मन भीजै तिसना दुख नवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ै आप जगत अपाया गुर बिन घोर अंधारू आप मलाए आप मिलै आपे दे प्यारू आपे दे प्यारू सहज वपारू गुरमुख जन्म सवारे धन जग मह आया आप गवाया दर साचै सचियारू ज्ञान रतन घट चानण होआ नानक नाम प्यारू सचड़ै आप जगत अपाया गुर बिन घोर अंधारू वडांस महला तीजा एहो शरीर जजरी है इसनो जर पहुंचै आए गुर राखे से उभरे होर मर जमै आवै जाए होर मर जमै है आवह जावह अंत गए पछतावह बिन नावै सुख न होई एथै कमावै सो फल पावै मनमुख है पत खोई जमपुर घोर अंधार महा गुबार ना तिथै भैण ना भाई

माया विद्यों कट्टी है सचड़े नाम सुमाए सच्चे नाम सुमाए हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रहे दिन राती विच्चों हों मैं जाए जिन्नी पुरखी हर नाम चेत लाया दिन कै हों लागू पाए काया कंचन ता थी है जां सतगुर लए मिलाए सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर भरम भलाणिया क्या मुँह देसन आगे जाए क्या देन मुँह जाए अवगुण पछताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला फिर कै अंक समाए तिस जेवड़े अवरना सूजई किस आगे कही है जाए सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाए जिन्नी सचड़ा सच सलाहिया हों तिन लागू पाए से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चे सर नहाए सच्चे सहज सुभाए नाम निरंजन अगम अगोचर सतगुर दिया बुझाए अन दिन भगत करह रंग राते नानक सच समाए जिन्नी सचड़ा सच ते आया हों तिनकै लागू पाए वडहंस की वार।

सब आखुहु सतगुरु वाहु वाहु जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जियो सोए सतगुर सेवै।

ऐसे मिलन वडियाईया दरगाह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनन सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाही प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सतियार नानक सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो नदर करे करतार महला तीजा होर वडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिग वास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिखरा।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हठ काम ना आवै रास जमपुर बदे मारिय है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो हो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो हो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो हो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाई। इस भेखै थामहु गिरहु भला जिथहु को वरसाई। शब्द रत्ते तिन्ना सूझी पई दूजे भरम भुलाई। पै किरत कमावना कहना कछु ना जाए। नानक ज्योति सुभावै।

ना हो गई। अचिंत वत्सय मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय। मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाय। सज्जन मिले सज्जना, सच्चा शब्द सुपहाय। घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय। पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गुआय। नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी। तित जाए बहु सत संगति, जिते हर का हर नाम बिलोई। सहजे ही हर नाम ले हो, हर तत् ना खोई। नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोई। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई। तिस गुर को सब नमस्कार करो, जिन हर की हर गाल गलोई। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना,

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार एक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाई प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेवी शब्द वसै मन आए मन तन शीतल शांत होए कृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे।

अर्थ है सच सिरजनहारी जिस तू मिले है प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारी हौ बलिहारी सतगुरे अपने जिन मेरा हर अलख लखारी। श्लोक महला तीजा रत्ना पारख जो होए सो रत्ना करे विचार रत्ना सार ना जानी अज्ञानी अंध अंधार रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझन हार मूर्ख आप गणाई दे मर जम है होए खुआर नानक रत्ना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार सदा सदा नाम उच्चर हर नामो नित व्यवहार कृपा।

तीजा कंचन काया निर्मली जो सच नाम सच लागी निर्मल ज्योत निरंजन पाया गुरमुख ब्रह्म पौ भागी नानक गुरमुख सदा सुख पावे अन दिन हर बैरागी पौड़ी ते गुरसिख धन धन है जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सतगुर नाम दृढ़ आया तिना हूं मैं दुबदा भन्नी।

गाय नानक वेख विगसिया हर सच्चे की वडियाई पौड़ी जिनकै हर नाम वसिया सद हिरदै हर नामो तिनको रखन हारा हर नाम पिता हर नामो माता हर नाम सखाई मित्र हमारा हर नावै नाल गल्ला हर नावै नाल मसलत हर नाम हमारी करदा नित सारा हर नाम हमारी संगत अत प्यारी हर नाम कुल हर नाम परवारा जन नानक कौ हर नाम हर गुर दिया हर हलत पलत सदा करे निस्तारा श्लोक महला तीजा जिन कौ सतगुर भेटिया।

सार नानक जिन को लदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास। मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनास नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखियास पौड़ी। हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सर्द गई। हर नाम हमारा वणज

हर रतन है मुक्त करावन हारा। नानक जिसनो नदर करे सो पाई, सो होवै दर्श त्यारा पौड़ी। तन तन सो गुर सिख कही है, जो सतगुर चरणी जाए पया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया। तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाणै गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा, मन हथ किनै ना पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हठ भेख कर भरम दे, दुख

ते आई। धन धन सत पुरख सत गुरु हमारा, जित मिले है हम हर भगत पाई। धन धन हर भगत सत गुरु हमारा, जिसकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई। धन धन हर ज्ञानी सत गुरु हमारा, जिन वैरी मित्र हम पौ सब सम दृष्ट दिखाई। धन धन सत गुरु मित्र हमारा, जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई। श्लोक महला पहला, घर ही मुंद विदेश पेर, नित झूरे सम्हाले मिल।

पौड़ी, जिन उपाए जी तिन हर राखिया, अमृत सच्चा नाउ भोजन चाखिया, तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया, सब अंदर एक वरतै तिने विरले लाखिया, जन नानक भये निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा, सतगुर नो सब को वेखदा, जेता जगत संसार दिठै मुक्त ना हो गई, जिचर शब्द ना करे विचार, हम मैं मैल ना चुकई, नाम ना लगे प्यार, इक आपे बख्श मलायन डुबदा ताज विकार, नानक एक दर्शन देख मर मिले, सतगुर हेत प्यार। महला तीजा, सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार,

0: मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

गुण होन ता कटियन ते भाई से वीर अगे गए ना मनियन मार कड होवे पीर सोठ महला पहला कर पहला मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी से कर भागठ देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहया विरला बूझै कोई रहाओ हाण हट कर आर जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस्त सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाईया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदियां कर धावनी ता को आखै धन नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगन वन सोठ महला पहला चौतुके माए बाप को बेटा नीका ससुरै चतर जुआई बाल कन्या कौ बाप प्यारा भाई कौ अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया खिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परो गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंधन वहन रत्ता हितकारी शब्दै सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया

कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई निर्भउ निरंकार निर्वैर पूर्ण ज्योत समाई नानक गुरविण भरम ना भागै सच नाम वडियाई सोठ महला पहला दुतुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंट चौबारा सगल भवन की

जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पावह छूटह है शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै विरले सूचाचारी तंतै कौ परम तंत मलाया।

प्यारी जीओ घट घट रव रहा बनवारी जल थल महील गुप्तो वरत गुर शब्दी देख निहारी जीओ रहाओ मरत पयाल आकाश दिखायो गुर सतगुर किरपा धारी जीओ सो ब्रह्म अजोनी है पी होनी घट पीतर देख मरारी जीओ जन्म मरण को एहो जग बपड़ो

तिहारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ नरारे, बहुड़ना गर्भ मजारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासिया, हर मन वसिया निरंकारी जियो। सोठ महला पहला, जिस जल निद कारण तुम जागे आए। सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ हो वेश भेख चतराई। दुबदा इहो फल नाही जियो, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पाव है, घर अमृत घट माही जियो। रहाओ अवगुण छोड़ गुणा कौ धावो, कर अवगुण पछताही जियो। सर अपसर की सार न जाने, फिर कीच बड़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नावो काही जियो। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साकह। की पर घर जोहन लागा, घर दर राख है जे रस चाख है। जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा। नाम विसार अन रस लोभानी, फिर पछताहे अपागा रहाव। आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग पगावै, गुरमुख सो अनरागा। हर रस ऊपर अवर क्या कही है, जिन पिया सो तृप्तागा। माया मोहित जिन इहो रस खोया,

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो हो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो हो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाइए।

हर जन उदासी ज्ञान तत् विचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राखिया उर धारी एहो मनुआ दह दिस धाम दा दूजै भाई खुआया मनमुख मुगद हर नाम।

पाया, पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया, हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, वो पाए गुर विचारा, हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा, नानक नाम रत्ता एक रंगी, शब्द सवारन हारा, सोरठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी, जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी, जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से भाई, गुर कै शब्द पर

पावह ना बुझह विचारी निंदा दुष्टि ते केन फल पाया हरनाक्ष नखह बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो

हिरदय जग जीवन सद वस्या, तज काम क्रोध अहंकारा, सदा हजूर रविया सब ठाई। हिरदय नाम अपारा, जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मनह प्यारा, सतगुर सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जग आया, हर रस चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावे गुणी अगाया, कमल प्रगास सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया, राम नाम की गत कोए ना बूझे, गुरमत हृदय समाई, गुरमुख होवे सो मग पजाने, हर रस रसन रसाई, जप तप संजम सब गुरते होवे, हृदय नाम वसाई, नानक नाम समल है से जन सोहन, दर साचै पत पाई, सोठ महला तीजा दु तुके, सतगुर मिलया उल्टी पई पाई, जीवत मरै ता बूझ पाई, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मलाई, मन रे हर हर सेती लिव लाए, मन हर जप मीठा लागे पाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाउ, बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए, तोह कुटह मनमुख कर्म करह पाई, पल्लै किशु ना पाए, गुर मिलै नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई, ये गुर सेवा चित लाए, नानक नाम हर पाई पाई, गुर शब्दी मेलाए, सोठ महला तीजा घर पहला, तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई, गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामै ते सब उपजे पाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे ते उबरे पाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है पाई, हिरदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे पाई, राम नाम लिवलाई। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाई। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

वावह हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे करे अंदर सच पाई सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते।

दुबदा सहज सुमाणी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल हुआ किल बिख काटन हारा शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस दे नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए।

राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करह सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, शब्दे हम मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, वणजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहु, आपे वणज व्यापारिया।

आपे पतन पातनी प्यारा, आपे पार लंगा, आपे सागर बोहे था प्यारा, गुर केवट आप चला, आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा, कर चोज वेखे पातशाह, आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्श मला, सोरठ महला चौथा चौथा, आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए।

अमृत मुख चोए रहाउ। आपे जल थल सब है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सब नारिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

आपे अलख ना लखी प्यारा आप लखावे सोई आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड़ अवर ना कोई सब घट आपे भोग वै प्यारा विच नारी पुरख सब सोए नानक गुप्त वर्तदा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सोठ महला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा आपे थाप उथापै आपे वेख विगसदा प्यारा कर चूज वेख प्रभ आपै आपे वण तिण सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापै जप मन हर हर नाम रस त्रापै।

जन नानक हर रस त्रापे सोठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभे आपे तोल तलाया आपे साह आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपूरे मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप।

आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत संगत मिल त्याए तू हर हर बहुड़ ना आवन जान रहाओ आपे ही गुण वरतदा प्यारा आपे ही परवान आपे बख्श कराईंदा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वरतदा प्यारा आपे ही फुरमान आपे भगत भंडार।

आपे कीमत पाएंदा प्यारा, आपे तुल परवान, आपे अतुल तुलाएंदा प्यारा, जन नानक सद कुर्बान। चौथ महला चौथा, आपे सेवा लाएंदा प्यारा, आपे भगत उमाहा।

साधु जन हिरदय मिलिया शांत मरारी रहाओ। तू हिरदय गुप्त वस है दिन राती, तेरा भाव ना बुझे गवारी। सतगुरु पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया, गुण गावे गुण विचारी। गुरमुख प्रगास भया शांत आई, दुर्मत बुद्ध निवारी। आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया, सत संगत पुरख तुम्हारी। पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया, जिनको कृपा भई तुम्हारी। नानक अतुल सहज सुख पाया, अन दिन जागत रह बनवारी। सूरठ महला चौथा, हर सिंह प्रीत अंतर मन भी दिया।

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया पाए सुपाई मनमुख भूखे दह दिस डोलह बिन नावे दुख पाई जन्म मरै फिर जोनी आवै दरगह मिलै सजाई कृपा करह ता हर गुण गावह हर रस अंतर पाई नानक दीन दयाल भये है तृष्णा शब्द बुझाई सोरठ महला चौथा पंच पदा अचार चरै ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन भीतर ता भ्रम काटिया जाई मेरे गोविंद अपने जन को देह वड़े आई गुरमत राम नाम परगास्त हो।

कृपाल हुआ प्रभ मेरा, थे लागे गुर की बाणी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्व जिया दयाला। सब किस कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाला। राख ले हो नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत कृपाला। सूरठ महला पंजवा घर पहला, चौथुके गुरु गोविंद सलाहिया पाई। मन तन हृदय तार, साचा साहिब मन वसै भाई।

निरपौ भय गुरचरणी लागे, एक राम नाम आधार सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है ती होमनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज सोभा कारज आया रास्ते, नानक को गुरपुरा भेट्यो सगले दुख विनासे। सोरठ महला पंजवा सुखिए को पेख है सब सुखिया,

आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरहै नाही, चरण धूर मन भाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निधान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक कौ तुम सेवा दीनी,

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीव हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाउ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हृदय त्याईए सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

युग अंतर गुरु नानक की वडियाई चौठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

मल मल धोवा एहो मन तै कू देसा सुन मीता हौ तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना कीजै सरन परीजै करै सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयो दर्शन हर जियो पाइयै भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दाता रे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परियो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया जे फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरु ते मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेह ठाकुर को सुनत अगाद बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुरु नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अरादे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेहे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेहे नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेहे गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करिया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साद लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी कापूर सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी
चोट महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख

भाजन कौ सगली दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो।

संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राये अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भये सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

सुख नहीं पाईए। हो होरेन तू सगल की मेरे मन तौ आनंद मंगल सुख पाईए। काल ना भाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ। अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दा मोदर दयाल माधवी पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। चौथ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा बिचरत आन मलाया। पशु प्रेत मुग्ध भये स्रोते हर नामा मुख गाया। पूरे गुर की देख वडाई ता की कीमत कह ना जाई रहाओ। दुख सोग का टाहयो डेरा अंध मंगल बिसरामा। मन बांछत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा। इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने। निरपौ भये हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पानी। उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा। कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा। चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए। सिमरहो हर हर नाम परानी बिन सह काची दे अज्ञानी। रहाव मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई। राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई। हौ हौ करत बेहाय।

आवहो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेत्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया तां की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भय बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की सरन पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोस्त ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंत सेती घर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पै लाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया

थीवै विघ्न बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाए हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हऊ मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाई गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुरमिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माधो जिया संतो हो कट कट रहया समाहेउ पूर्ण पूर रहेउ सर्ब मह जल थलर मैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायु सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे आसमायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निद पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास त्यावहु ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन सीतल अग्न ना अंतर तुखी।

गुर पूरा भेटियो वड भागी जन नानक कतह ना धावहु सूरठ महला पंजवा जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल ना जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मैं रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावहु पूर्ण होवै काला रहाउ सार समालै नित प्रत पालै प्रेम सहत गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवा अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कहो बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़ दुख ना होई रहाओ वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई तोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारै मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा रहाउ समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करनै हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा सूरठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोहित चढ़ लंघो बिक संसार रहाव पई कृपाल पूर्ण अविनाशी आपह कीनी सार पेख पेख नानक बिगसानु नानक नाही सुमार चौठ महला पंजवा गुरपूरै अपनी कल धारी सब घट उपजी दया आपे मेल वडाई कीनी कुसल खेम सब भया।

रत्न जास गाई, मिट गई चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण बसाई, सुख पाया सहज धुन उपजी, रोगां घाण मटाई रहा, क्या गुण तेरे आख बखाना, कीमत कहन ना जाई, नानक भगत भय अविनाशी, अपना प्रभ भया सहाई।

पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुरपूरा सुखदाता, करन कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, नंद बनोद मंगल गुण गावहु, गुर नानक पय दयाला, जय जयकार पय जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हटतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरिय भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याइए भाई मन तन शीतल होए चौठ महला पंजवा संतो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

हर का नाम आधारो नानक पात्रा की परमेश्वर उदरिया सब संसारू सोठ महला पंजवा मेरा।

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता। सोठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारू नह पतियाया। उमराव हो आगे तेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।

मैं सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द अगाजा जिस पह क्या चतराई मिल नानक आप गुआई चौठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो हो घर बैठे गुरु त्यायो हो गुरपूरे सच कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल सियो घर आए कर इशनाना रहाओ साची।

सोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याइये आन दिन सो कृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़।

ब्रह्म ते आई एहो ब्रह्म विचार सो जानै जिस दयाल होए भगवानै बाबा नानक प्रभ सरनाई सब चिंता गणत मिटाई सोरट महला पंजवा पार ब्रह्म निभाई पूरी काई बात न रही आयूरी गुर चरण लाए निसतारी हर हर नाम समारी अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया हर

कर कृपा अंतर जामी, दास नानक सरन स्वामी। सूरठ महला पंजवां, गुरपुरै चरनी लाया,

प्रभराव रहे आपर पूरी हेम कुशल पया इस नाना पार ब्रह्म वित्तो कुरबाना गुर के चरण कवल रिद तारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सरो

मिल त्याई है मन पाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस शतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो।

पंथ निहारों नैन नीर भर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पां बीरी के पात पर दो।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती चौरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौ जल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

आप प्रभ स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संतां तूरी।

मल लाथी पार ब्रह्म भयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रभ पाया चौठ महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दइए वसाया सुख सागर गुर पाया।

प्रभ की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आगे।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अरादियो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर

सवारी, प्रभ अपना बिरद सुमारी, पतत पावन प्रभ नामा, जन नानक सद कुरबाना, चौठ महला पंजवां।

दाता शुभ चितवन दास तुम्हारी राख पैज दास अपने की कार्य आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण काल दिन तार।

ठाक रहाय, विघ्न गए हर नाय। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी भया।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई कार्य सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै तिसकी गत होवै, उधरह सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहो पूरन हर तन पाया। कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी। बख्शे अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया। थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती। गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाउ। गुरबाणी गावह पाई, ओह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संस्था।

हर सर्ब निरंतर जानिया रहाओ सब जी तेरे दयाला अपने भगत करहे प्रतपाला अचरज तेरी वडियाई नित नानक नाम त्याई। सोरत महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत न आवै नेरे।

आओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा पूरा गुर पूरी मत जाकी।

काल दीन दुख भंजन आपे सब बिद थाटी हिन मह राख लियो जन अपना गुरपूरै बेड़ी काटी मेरे मन गुर गोविंद सत त्याई है सगल कलेश मिट है इस तन ते मन चिंदिया।

सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो

अनपूरन सब मही अवर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

तैं खोजत उदयाना बहुत जन्म भरमत तैं हारियो अस फिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज नानक बात बताई सूरत महला नवा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जिहे सिमरत गनकासी उदरी तां को जस उरतारो रहाओ अतल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निर्भय पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निज

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाव। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

मन तिमर मोह मन रहो पुरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निसबासुर नह छूटी अधमाई साध संग कब

निज मत साधन को पाखियो तो हे पुकार सोठ महला नवा यह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो दुख में संग ना हुई रहाओ दारा मीत पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे जब ही निर्तन देखियो नरको संग शाड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तहारो लीनो सोठ महला नवा मन रे

हरख सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जग ते रह निरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक लीन।

बिंद सुखवासी नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस मरास रह बैरागी

मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख देव वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहना कीम ना पाई सुन संवाद महापरमार्थ तीन पवन पत नामंग मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामंग कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामंग मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामंग जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिय भाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक भरम भला एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे कछ होए अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुरु।

प्यारी अमृत रसन हरे बूढ़े पारे पै बिना प्यारे तारे नजर करे पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिया प्यारी।

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण गातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

पी पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ बिख माया चित मोहया भाई चतराई पथ खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आखिए भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सिंह बैरागी है भाई दर घर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनहु गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूढ़ है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूढ़ पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना भाई।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआउ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी।

अवर ना करना हार प्यारी अंतर जामी एक रहाव कोट जन्म भ्रम आया प्यारी अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारी बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारी ते लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिए प्यारी जो साची सरनाई मिठा करके खाया प्यारी तिन तन की तारोग कौड़ा हुए प्रतिष्ठिया प्यारी तिस्ते उपजिया सोग भोग पुंछाए पुलायन प्यारी उतरे नहीं वजोग जो गुरमेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवे मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी चेतन होए तूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरे नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत सांगना कीजई प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारी सो मोहि काले उठ जाए मन मुख ढोई नह मिले प्यारी।

प्यारी, एक ना चली नाल, जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी, तिन कुल लागे गाल, हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी, कूड़ ना चली नाल, सतगुर जिना मलाय उन प्यारी, साचा नाम समाल, सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी, जिसनो नदर करे अन दिन कीर्तन गुण रवे प्यारी, अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी, पवजल पार परे जिस पावे तिस मेल।

0: सतगुर प्रसाद।
1: पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो,
0: निवल पुअंगम साधे, पंच जना स्यों संग ना छुटकियो, अधिक हम बुद बाधे,

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराए, मन की मैल ना उतरै एह बिद, जे लख जतन कराई, कनक कामनी है वर गैवर, बहु विद दान दतारा, अन बस्तर भूम बहु अर्पे, नह मिलिए हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन दंडो होता, खट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंदन मह परया।

या फिर जन्मे हर सिंह संग ना गया। राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अखारा, तेज सोहनी चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा। हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा, कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना। तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवे सच्चा सोए ससुरे पिए पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा शिंगारी नाओ मन।

सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानो सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास, महला तीजा से सहन से सजना, ये गुरमुख मिलह सुपाई।

जे अवमान करहे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुद आपे जगत अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा।

जग कमला फिर गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा भरम भुलाया अमृत तज बिक संग्रह करत आप खुआया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन सीतल होया

बिरसा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी, सो हर पुरख अगम है, कहो कित बिद पाइये, तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो, जन क्यों ते आइये, निरंकार निरंजन हर अगम, क्या कह गुण गाइये, जिसे आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाइये, गुर पूरे वेखा लिया, गुर सेवा पाइये। श्लोक महला तीजा, ज्यों तन कोलू पीड़िए, रतना पूरी दे, जियो वन्ये चौखनिए, सच्चे संदड़े ने, नानक मेल ना चुकई, राती अते दे, महला तीजा, सज्जन मैंडा रंगला, रंग लाए मन ले, ज्यों मजीठे कपड़े, रंगे पी पाहे, नानक रंग ना

हरे आपे से टसवार सिर तंदे लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाए दा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा।

इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आय। नानक जो गुर सेव है अपना, फौतिन बलिहारै जाऊं। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजै लगै जाय। तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याय। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवै, थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके, अट अट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी, हमै परम पलाय। गुर प्रसादी भउ पया, बडभाग वस्या मन आय। पै पय मन वस हुआ, हमै शब्द जलाय। सच रति से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाय। सतगुर मिलिया नाउ पाया, नानक सुख समाई पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा ड्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फिरे से बदे दुख सहाय।

नानक नगरी बख्शले शब्दे मेल मलाहे महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ ज्यो छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाउ नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड गया से दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया सलोक महला तीजा थाले विच तै वस्तु पयो हर भोजन अमृत सार जित खादे मन तृप्ति है पाइय मोख द्वार एहो भोजन अलभ है संतो लभे गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल महला तीजा जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को

नाम है सब परम दे नित जग तोता सह सार मन मुख कर्म कमावनी हम मैं अंध गुबार गुरमुखे अमृत पीवना नानक शब्द विचार महला तीजा सहजे जागे सहजे सोए गुरमुखे आनंद ने उस्तत होए मन मुख पर मैं सहसा होए अंतर चिंता नींद ना सोए ज्ञानी जाग है सवह सुपाए नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी से हर नाम त्याव है जो हर रत्या हर एक त्याव है एक इको हर सत्या हर इको वरत एक इको उत्पत्या जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आय जित किस सोजी पाय ऋण जिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाय नानक शब्द पछाणी है।

लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवार नहार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ जो विष्टा काग खावे जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावे हर गुरमुख नाम अराद कूड़ पाप लह जावे सलोक महला तीजा सेखा चौ चक्या चौ आया एह मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड़ तू गुर का शब्द पछाण सतगुर अगै तै पौ सब किस जाने जान आसा मन सा जलाए।

चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवे हिम्मत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी तड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझे बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझे इहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाने गुरमुख होए सो भउ करे अपना आप पछाणे गुर प्रसादी।

अंदर हो बाहर हो अंधिया शुद्ध न काई पाए। पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए, जो रत्ते हर नाए। जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए। पंडित दूजै पाए बरकत ना हो गई, ना धन पल्ले पाए। पढ़ थके संतोख ना आयो, हन दिन जलत विहाय। कूक पूकार ना चुकई, ना संसा विचों जाय। नानक नाम विहूनिया मुहे काल उठ जाय। पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारी, मिल पंथ दसाई। जो हर दसे मित किस हों बल जाई। गुण सांझी तिन स्यों करी, हर नाम त्याई। हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई। बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई। सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई। जे वेद पढ़ै जुग चार त्रै गुण माया मूल है। विच हों मैं नाम विसार पंडित भूले दूजै लागे माया कै वापार। अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए द्वार। सतगुर सेवै सुख पाया सच्चै शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चै नाए प्यार। नानक नाम रत्ते सहजे रज्जे

सखाई जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई पूरे कर्म पाया जाय। नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाई। महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है। जो नाम हर राती तिनके घर मंदर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोल है हर हर राम नाम हर साती।

पिच्छा सुख नहीं, मर जम्मे वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हो एक वार, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चा दरबार, नानक नाम विहुनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते एक अरादया, तिना एक सबेन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे है पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभे आए, नानक गणते सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कु महल ना जा

सतगुरे अपने घर वरतदा आपे लए मिलाई। नानक सतगुर मिले है सब पूरी पई, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। तन तन भाग तिना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहतिया। तन तन भाग तिना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनतिया। तन तन भाग तिना साध जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया। तन तन भाग तिना गुरमुखा, जो गुरसिख लै मन जिनतिया। सबदू वड्डे भाग गुरसिखा के, जो गुर चरणी सिख पड़तिया। सलोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रह। एक शब्द लिव लाए, नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिर। जो हर हिरदय सदा

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जुग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

री जन उथारे तपियो सुत्या गई विहाय। सतगुर का शब्द सुनना जागियो अंतर ना उपजियो चाओ। शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार न कमाय। जगत जलंदा डेठ मैं हम मैं दूजे पाय। नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई महा।

करहु पापिष्ट हत्यारी। ओहे घर घर फिरहै कसुध मन ज्यों तरखट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी। हर मेलो हो सतगुर दया कर।

हरसेति मन रव रहया सच्चे रहे आसमाय। नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे श्रृंगार। फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार। साक सुत साक लखणी नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी। हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी। जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी।

है। हर दासन को मित, हर दासन कै वस है। ज्यों जंती कै वस जंत, हर के दास हर त्याईंदी। कर प्रीतम स्यों नेव, कृपा कर कै सुनो प्रभ। सब जग मह वरसै मेह, जो हर दासन की उस्तत है। सा हर की वडियाई, हर अपनी वडियाई भाम दी। जन का जयकार कराई, सो हर जन नाम त्याईंदा। हर हर जन एक समान, जन नानक हर का दास है। हर पैज रखो भगवान, महला चौथा। नानक प्रीत लाई तिन साचै, तिस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिले ता पूरा पाई, हर रस रसन रसाई पौड़ी। रैन दिन सप्रभात।

जाय। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ लाया।

नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नाम पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया प्रम प्रमिया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै पया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जा तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बता थे हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर किरपाल बेअन अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला तां की रजाए लेख्या पाए अब क्या कीजे पांडे हुक्म होआ हासल तदे होए निबड़िया हंड है जी कमांदे महला दूजा नक नथ खसम हाथ किरत धके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्लां आप हाट बहालियो न आपे रचन रचाए आपे ही काल्यो न आपे जनते उपाए आप प्रित पाल्यो न दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्यो न नानक भगतां सदा आनंद भाओ दूजा जाल्यो सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वड्याईया दे ना पछोताए हों हर कै सद बलिहार ने जित सेवै सुख।

तेन निज घर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करन कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक अराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ना जाई। हमरा भरम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाऊ बाजीगर डंक बजाई।

राम न कर सपतारा जग जीवन प्राण आधारा रहाउ तेरे गलह तौक पग बेरी तू कर।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथी है ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाई

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उभा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

जह चिल मिल कारज संता, तह अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत सुमानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार भी जुल तही, मेरे नाही दूर, निज आत्मै रहया भरपूर, जह अनहत सूर उजियारा, तह दीप

मिल पारस कंचन होया मुख मन सारतन परोया निज पाओ पया ब्रह्म भागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर

साध। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज कोई अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक है स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रवदास हाथ पै नीरे, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह कास्यो कही है जा कारण हम तुम आरादी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिक राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना बिचार्यो राजा राम को रस यह रस अनरस दीसर जाही रहाओ जान अजान पये हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकस समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिद कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा।

का जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा आड़ मास नाड़ी को पिंजर पंख।

वेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन।

कोई। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाई, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सिंह चित लागे फिर का न खाई रहाउ, सच सिमरिया हुए परगास, ताते बिखिया मैं।

काती कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाने गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल तोवे मुसलमान सोई मालक होवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तुय को सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही।

प्रगट होए, जो तिस भावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देहे नानक सारिं को, होए जाते तेरे नाम वासा। तना श्री महला तीजा, कर दूजा चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एहो तन अखोट नान फुटे ना जाए। पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाए। गुर कृपा ते हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए। गुर पूरे हर तन परगासिया।

सुख मानी अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाय, गुर प्रसाद वसै मन आय, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई, किस सदा आनंद हुए दिन रात।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाई, अन दिन दा जह शांत ना पाई। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाई, नानक नाम शांत सुख पाई। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाली, जी जंत जिन्हें प्रतपाली।

जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पात उत्तम होए। रहाओ गुरमुख उपरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दिरड़ाई। भगत करे जन वडियाई पाए, काच रते सुख सहज समाए।

कूड़क सत तृष्णा यज्ञ बुझाई, अंतर शांत सहज सुख पाई, गुर के भाणे चले ता आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी,

क्या पावा तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

मावे ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा गुरु अंकस मार जवालन हारा। मन असाध साधे जन कोई अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काक्या तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार भवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत।

सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही ना जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हम मैं विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हम मैं जाए आपे बख्शे लय मलाए विख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पे खारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम बलिहार है जा

हर उड़तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सुवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नाम रत्ता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुट है हम छुटकाकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपेहो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरियो चंद चंदाकी तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे।

समझ पीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरे सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ तना श्री महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे है सब गावे है हर हर उत्तम बानी गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज बडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर। जाके वास है काम तेना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े। ता सर्ब सुख पावे मेरे मना, जप मन सत नाम सदा सत नाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया, तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पवजल करना।

प्यारी सब तुझे त्यावह मेरे साह ज्यों पावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लकी है, तेरी कुदरत कौन बिचारी। जल थल महियल रविया सरब ठाई, अगम रूप गिरधारी। कीर्त करह सगल जन तेरी, तू अबनासी पुरख मरारी। ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन दुआरी। तनासरी मोहल्ला पंजवां, दिन जल प्राण तजे है मीना। जिन जल स्यों हेत बढ़ायो,

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भौ भागा भई परा

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कीओ बंधानी तनासरी महला पंजवां वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै

ਪਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਰਹੇ ਓਲਾ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਜਨ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਾ।

प्रीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्धभ भस्म संगीत अमृत संग ना

आनंद राज पाई मुक्ति निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई तनासरी महला पंजवा जिन कीने वासे अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाय बिखै ब्याद तब हूटो रहाओ नह सुनिए नह मुखते बकिए नह मोह ओह डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सब कै लागै मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन ओह चलत दिखाया गूजी पाहे जलै संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर लै आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तना।

हार तनासरी महला पंजवा अब हर राखन हार चितारिया पतत पनीत किए खिन पीतर सगला रोग बदारिया रहाउ गोष्ट पई साध कह संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांछ नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राखियो अपना कर बिरथा।

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रति बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हर नेरा।

काल आन संयम किछना सूजै ए जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोए जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाई है साध संगत बिन सजाए अंदर।

जी उदारन सब कुल तार हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

एकत्र तह हर जस गावह नाथ कवित साध सभा मह अनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जा को कृपा कीजै तनासरी महला।

साध जन तन धन आपन थापियो हर जापना निमुख जापियो अर्थ द्रव देख कस संग नाही चलना जा कोरे कर्म भला तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी।

हाव निरतन कौ तन अंदले कौ टेक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाली तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोबिंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई संत अनुग्रह पय मन निर्मल नानक हर गुण गाय तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा।

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਤਨ ਕਰੈ ਮਨੁੱਖ ਡਹਕਾਵੈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जां कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका युग मह धर्मा जन

रूप तुमरे वचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिद पार उतारी रहाओ तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनस ना कतहु जात सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को भई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी रहाऊ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरे जाति रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाओ जिसका साथ नहीं रख लिया पूर्ण प्रभ की भांति मेल लियो आपे सुख दाता नानक हर राखी पाती। तनासरी महला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझ ते निवरह प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओहो तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मरार सहाय हो दा।

नानके आनंद पए दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवां चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख

सब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। धनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार।

स्वामी कोए न पहुंचन हार, जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ जाका अंत न पारावार, नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवां घर नौवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देव हो। दृष्ट प्रभ धारुहो कृपा कर तारुहो, पुजा गह कूप ते काढ लेवहो रहाउ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दोखा तन शाद पूरे। प्रभ बिना आन ना राखन हारा, नाम सिमरावहो सरन सूरे। पतत उदारना जी जंत तारना, वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवां, हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो। नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटह कमाणे पाप चिराणे। साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महात कह। आस प्यास रमन हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लह। सरन समरथ अकथ अगोचरा, पतत उदारन नाम तेरा। अंतर जामी नानक के स्वामी, सर्भक पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवां घर बारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापे, सोग अगन किस जन ना व्यापे। सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे। पर धन दुख किस पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ सरनाई। तनासरी महला पंजवां, तृप्त भई सच भोजन खाया। मन तन रसना नाम ते आया, जीवना हर जीवना। जीवन हर जप साध संग रहाउ, अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए। अन दिन कीर्तन हर गुण गाए, हस्ती रथ अस असवारी। हर का मार्ग हृदय निहारी, मन तन अंतर चरण त्याया। हर सुख निदान नानक दास पाया। तनासरी महला पंजवां, गुर के चरण जी का निस्तारा। समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ। कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया, दासी हर का नाम ते आया। बंधन काटन हार स्वामी, जन नानक सिमरै अंतर जामी।

बंद हरदे वनहारा चरण कमल स्यों लागो नेहो नानक की बेनंती एह एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नौवां काहे रे बन खोजन जाई सर्बनवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ पोह पमद ज्यो बास बस्त है मुकर माहे जैसे शाई तैसे ही हर बसे निरंतर काट ही खोजो पाई बाहर भीतरे को जानो एहो गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीनै मिटै ना भ्रम की काई तनासरी महला नौवां साधो एहो जग भरम भलाना राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाउ मात पिता भाई सुत बनता तां कै रस लपटाना जोगन धन प्रभता कै मद में अहनस रह दीवाना दीन दयाल सदा दुख भंजन तां स्यो मन ना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना तनासरी महला नौवां तेह जोगी को जुगत ना जानो लोभ मोह माया ममता फुन जेहे घट माहे पछानो रहाउ पर निंदा उस्तत नह जाके कंचन लो समानो हरख सोग ते रह अतीता जोगी ताहे बखानो चंचल मन दह दिस को तावत अचल जाए ठहरानो कहो नानक एह बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो तनासरी महला नौवां अब मैं कौन उपाउ करूं जेह बिद मन को संसा चूकै पहु निध पार परो रहाउ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो ताते अधिक डरो मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच धरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो पास ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरत पछानो तब हो पतत तरो तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाउ रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पए निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर कथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रि भवन जोत रहे लिवलाई सुर नर नाथ सच्चे सरनाई आनंद मूल अनाथ अधारी गुरमुख भगत सहज बीचारी भगत वचल पै काटन हारे हौ मैं मार मिले भगत हारी अनक जतन कर काल संताई मरन लखाई मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवे कहतो पढ़तो सुनतो एक तीर्ज धर्म तरनी तर टेक जत सत संयम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द भरम पौ भागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचै साच स्वरूप तनास

मिले मलाई। आप दिखावे आपे देखे, हाथ ना पतीजे ना बहु भेखे। कड़ भांडे जिने अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया। पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे। नाम जपै पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत भये उदा।

आवे पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाई रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै जिस भेटी है सफल मूरत करै सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै मन हठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल ज्यो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माई गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल यात्रा आवण जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरनी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच ना लागै मैल क्या मल धोई है गुणहा हार परोए किस को रोई है विचार मारै तरै तारै उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अनदिन हरक साचा दुख

लाप पूरा नामणु गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे बीणी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वडे आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा।

लेख है आपे सुरत बुझाई नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई तुम सारे अवर ना कोए आया जायसी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना आप अपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे वड्याई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दोए राह बाद वधंदिया जियो दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखलादी सिर भारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सियापै साचा सिर जनहारा भगत सोह दरबार शब्द सुहाया जियो बोल है अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसे है पारस होए जां तेरे मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी भूख प्या सुहात क्यों दर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याए सा जियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन।

आऊ ज्यों धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे पवरला ज्यों कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रा मैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरनी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रा मैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रा मैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हरका बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण सरन नामा बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै हौ बल बल जाऊ रमैया कारने कारण कमने अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधव यो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीमो चिर भयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण वाणी सुजस पूर राखो मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो हरसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कटै मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाओ साध संगत बिना भाव नहीं उपजै भाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सिंह पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मरारी हर के नाम बिन झूठे सगल पा

लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझह क्या अर्पों नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सं

अंकर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मुफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरुण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठी टसरी अमृत ससे टेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठी टसरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तुखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साजे आरती वार ले जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दिया रा निर्मल बाती।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रत्न नाम हर बसिया गुरु हाथ धरियो मेरे माथा जन्म जन्म के

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान दुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना, हर कृपा।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाऊ गुर खिन खिन प्रीत लगाव हो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया भुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिस हर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाऊ धन तन वड भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर बांझा।

कृपाल कृपा प्रभ धारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतार्यो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जैत्री महला चौथा सत संगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत धार रस लीड़ा मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा मेरा मन तन

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

कथा मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन मिल सत

अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै तां की निर्मल रीत रहाओ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

मुखी उजल संग संतन कह पाई जैत श्री महला पंजवां कर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

सब महियो वर्ण ना दिसै चिहन ना लखिए सुहागन सांत बुझहियो सर्ब निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवां तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बेअंत बड दाता मन गिहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुरु प्रसाद नानक मन वसिया दुख ना कबहू चूरों बुझ प्रभ को जय श्री महला पंजवां लड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके घट घट तिसे

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परियो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाउ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत गहयो चरण आसरा नाव रूप भयो साध संग भवनिद पार परा अपयो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जय श्री महला पंजवां जा कहो पए गोविंद सहाई सूख सहज अनंद।

जिन रस रस हर गुण गाई। जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे मह दीप रहाओ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम। चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन।

या रस में है मग्न होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारु हर प्रेम।

लाड़दास जाने अपने कुदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंध कूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को भओ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूलियो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

दहन दिस को उठताया, घट ही भीतर बसै निरंजन, ताको मर्म ना पाया, ना हिन गुण ना हिन कश जप तप, कौन कर्म अब कीजै, नानक हार परयो शरनागत, अपै दान प्रभ दीजै। जैत श्री

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दास प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंदा लाल रजाया हौ तिस आगे मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किसनीशी शंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दस।

ठाकुर हों किद्दी गुण अवगुण ना पछाणी गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पता।

आई महामंगल रहस थिया फिर दयाल साधना वरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रय अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महा।

असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलीऐ मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी घूलीऐ लूक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया धारो काड पव जल फेरिया। सलोक निरत न पवै असंख गुण ऊचा प्रभ का नाम नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ संत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मन है चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है। सलोक रे मन ता कौ त्याई है सब बिद जा कै हाथ राम नाम तन संची है।

पूर सोए जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुण ताके क्या गनी भज सरन स्वामी सुखागामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत।

ना दुख जले विनवंत नानक दया धारी मेल लीने एक पले जैत श्री संत महला पंजवा पादाणु संसार गर्भ अटिया करते पाप अनेक माया रंग रत्या लोभ मोहे अभिमान बूढ़े मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता एहे करत बिहावे उज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है जिथेया किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम धन नहीं खटिया उदम कर है अनेक हर नाम ना गावही भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही बिनवंत नानक भरम है परमाए खिन एक टिकन ना पावही जोबन गया बतीत जर मल बैठिया कर कंप है सिर डोल नैन ना दीठिया नह नैन दीसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चालिया कहया ना मन है सिर खाक छन है जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल सरण।

पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़िय साच, पूर रहे हो सर्वतर मैं।

अर्थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार। उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार। बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जासह जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है। खंडन कल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। हब रंग मान है जिस संग तैस्यो लाइय नेहो। सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमोहु बिनसे सब रोग सलोक कुटुंब जतन करनं माया अनेक उदम है

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरू उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

लोका बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाउ पौड़ी, महापयान उद्यान नगर कर मानिया।

प्रभु चूरी है। देहो दर्श मन चाहो लह जाहे वसूरी है। होए पवित्र शरीर चरना धूरी है। पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है। सलोक रसना उचरंत नाम सर्वनं सुनंत शब्द अमृत है। नानक तिन सत बलिहारन जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है। हब कूड़ा वे कम इकस साई बाहरे नानक से धन जिन्ना पिरहड़ी सच सिंह पौड़ी। सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा। हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा। चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा। संतां संग उदार सगला दुख लथा। सलोक भावी अदोत करनं हर रमणं संजोग पूर्ण है।

परवान जित मलंदड़ो महापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच पुजाई बड़े भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हाबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक।

गुर प्रसाद राग टोडी महला चौथा घर पहला हर बिन रह ना सकै मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहुर न भवजन फेरा रहाउ मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी हर नैन हो हर प्रभ हेरा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया हर

कही है। तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया। तुर

साधू संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाऊ पूछ समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना एहो मन लायो बिगसेओ पेख रंग कसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाजे अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज सिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन सरम कीनो इकत्तर करी है।

प्रभ को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां कृपा निद बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कशु मेरा संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विद कौ तावे सगल निरारत काम इन गोविंद अवर

महला पंजवां सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर

तरिया टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाउ बड़े भाग गुरे अपना पायु गुरमो को हर नाम दृढ़ायु हर हर जाप ताप व्रत नीमा हर हर त्याई।

सब किस किस के ग्रह में आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीह ना होए रहाओ, हौ टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा, गुरमिल भरम गवाया ही, एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्हो, लेख लिखियो तुर माथे, एह बिद नानक हर नैन अलोए, टोडी महला पंजवा, गर्भ गिहिलड़ो मूडड़ो ही ओरे, हियो महाराज री।

महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ो नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिख्याते गुर को शब्द मेरे ही अरे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो प्रेम गह्यो मोहे हर रंग पीन पेखियो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हरखे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

राम नाम निर्मल है रीत रहाउ, प्राण आधार जीवन धन मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बात घाट तुसा संग मोरै, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद भये मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत, टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निम कहिए।

एते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ, खोबो भरम राख मेरे प्रीतम, अंतरयामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम धन मेरा, अमृत दृष्ट तारुह प्रभ मान, आठ पहर रसना गुण गावे, जस पूर अगावह समरथ कान, तेरी शरण जीयन के दाती, सदा सदा

राम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पये।

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड्डे भाग देवै परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनसे मद ढीठे अस्थिर भये साच रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद हुए दिन राती अंकुर भलो हमारा रहाओ गुरपुरा भेटियो वड भागी जाको अंत न पारा वारा कर गह काढ लियो जाने अपना बिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुड़ना संकट द्वारा नानक शरण गई।

रखै, कोट अनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ, कोट जन्म के किल विख नास है, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उतरी भुख, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख, टोडी महला पंजवा, हर हर चरण हृदय उरतारी, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हम

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमहाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देवरा मह जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै। पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसै। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमान सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपैत इस देव जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेटे स्वामी दुख हम मैं रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं बिसर सब जाए तू बेअंत सर्व कल पूरा किसी

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तू दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे पानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कस नीस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए, रहाउ केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता ज्योत अनेही, सर्वे परमल करना, के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई, तेरे नाम निवे रहे लिव लाए, नानक तिन दर भीख्या पाए, तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एहु तन माया पाहया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई, मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी।

परमल लाइय एव कह सुहागनी भैने इनी बाती सहु पाइय आप गुआइय ता सहु पाइय और कैसी चतुराई सहु नदर कर देख सो दिन लेख कामन नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सफाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी।

जात सनाती होर हिंदवाणिया एह पी लेखै लाए वे लालू खून के सोहले गावी है नानक रत का कुंगू पाए वे लालू साहिब के गुण नानक गावे मास पुरी विच आख मसोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखै वख अकेला सच्चा सो साहिब सच तपावस सचड़ा न्याओ करेग मसोला काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदू सतान संभाल सी बोला आवन अठतरे जान सतानवे होर पी उठसी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला तलंग महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब आए हुक्म खसमा हो हुक्म सब वर्तनी सच साहिब साचा खेल सब हर तनी सलाह हो सच सब ऊपर हर तनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखै हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश घर मंदर हर बनी विच वरतै नानक आप झूठ कहो क्या गनी तलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावै दुर्मतिया जब आणै बलवंच कर झूठ तब जाणै जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना चेतै हर नामा खिन मह बिनसै सब।

छड़ाई जिस कृपा कर हृदय वसै तलंग महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद खाक नूर करदम आलम दुनियाए असमान जिमी दरख्त आब पैदाइश खुदाए बंदे चश्म दीदंग फनाए दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए रहाओ गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराए दिल कब्ज कब्जा कादरो दूजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाए जब अजराइल बस्तनी तब चे कारे बिदाए हुआल मलूम कर दूं पाक अल्लाह बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा तलंग घर दूजा महा।

सगले आपू तेरे जन देख है दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया।

करी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है।

गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइया हर दरगाह पैलाइया हर आप गल लाइया जो गुरमुख नाम ते आएंदे

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बेहात है फूटे।

भजन ते निर्भय पद पावे तलंग महला नौ जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफल सोया जो तन उपजया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जां स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो।

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो। काल पास जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहे।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जित सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

जाय नानक कम न आवई जित तन नाही सच्चा नाम। सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग न खिंथा जोग न डंडै जोग न भस्म चढ़ाई जोग न मुंदी मूंड मडाय जोग न सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है। गली जोग ना हुई एक दृष्ट कर समसर जान।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै धावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागै घर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजै तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बुला।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ, सत संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मेलो सत संगत, हम तो वह पग जन के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के, सुई महला चौथा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी, हर अस्तर सेव सुख समगा, मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे, सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ, नरपत राजे रंग रस मान है, बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरम तुम्हारी, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा, तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटहों सद घुमगा।

हृदय शुद्ध ना हुई, अन दिन कर्म करह बहुतेरे, सुपने सुख ना हुई, ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा, मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना, दूजे पाए

भुखियात सत तीरथ तिन तिलक कढ़ाए जन नानक तिन को अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय सूही महला चौथा तिनी अंतर हर अराध्या जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा तिनकी बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे तिस हलत पलत।

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

छूट दे। उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान। सूही महला चौथा घर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम धर सोई,

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाऊ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इकतै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए सूही महला चौथा तू करता सब किसे आपे जान है क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझै जेहा को करे तेहा को पाई मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है बुरा भला तुद सब किस सूझै तुद भावै तिवें बला वह रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुख धंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जे ही तू नदर करह तेहा को हुवै बिन नदरी नाही को भेख तेरी वडियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई

मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाए मेरे राम हर जन अरोग भये गुरबचनी।

मेरा हर हर तिनके हम मैं रोग गए रहाउ। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हम मैं कार कमाई। जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई। हो मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख भारी। गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हो बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो। नानक आपे वेख हर बिगसै।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै। इकना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख करह से रोवै।

मैं मालत हुई, कहो नानक मेरी परम गत होई। सूही महला पंजवा, कीता लोड़ है सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाही कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाऊ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारे कछु ना पाईऐ, साच लगे ता हूं मैं जाईऐ। जिसनो लाए ले सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम त्याए। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ता आणै रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभु सदा त्याई। सूही महला पंजवा, तन सुहागन जो प्रभु।

जन नानक पिर धन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई प्रम प्रम आयो तो नदर ना पाई किन बिद ही अरो धीरे निमानो मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता।

पई नरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले झागी, खिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझे सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

पिंड सब थारी लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन कहो हम बारी रहाओ प्रभ दाता मोहे दीन पेखारी।

माता मन नहीं प्रीत कह मुख राता कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजै कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाउ दूजा सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बूझै ना आना माया मोह रंग लपटाना रहाउ लोभ लहर को बिगस फूल।

देखते अंधे छोड़ जाहे झूठे सब तंधे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मुहे साध संग दी जय तो किश पाई।

नैन पतीरी जहां पठाव हो जाओ ततीरी जप तप संयम देव जतीरी एक निमख मलाव हो मोहि प्राण पतीरी मान तान हम्बुद हतीरी सा नानक सुहाग बती।

संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सुई महला पंजवा, दर्शन

अपनी शरण राख प्रभ दाती, गुर प्रसाद किन विरले जाती। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल बस

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पेखो हर संग सहाय, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गर कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बनोद मंगल।

मन तूर बछाह जन्म जन्म के किल विखलाह मन तन प्राण जियो अरपाह हर सिमर सिमर मान मोह कटाह दीन दयाल करहु उत्साह नानक दास हर सरन समाह सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभ चरण कमल रिद माही निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाउ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाई लियो जाने अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए।

सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता पाई है।

महला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुतर माई दिन रैन अपना किया पाई।

पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाय कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराई रहाओ हनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निद पाई।

को सुखी ताके पाछे जाऊं छोड़ जाहे जो सगल को फिर लपटाऊं करहो कृपा करनापति तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया।

रहाउ। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया, अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया, विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहु बिद फिरिया, पर को हिरिया बिखना किरिया, अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिर।

कर्मी आया, पुरुष आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाउ, महा दुत्तर माया, जैसे पवन चलाया, सुन सुन ही डराया, कर रो धर्म राया, गृह अंध कुपाया, पावक सगराया, गही ओट सधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा कर छेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा। राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तेरा पाना तू है मनाई

जित तुद त्याई निर्मल हुआ देहा मेरे राम हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूट है संतो हो सागर पार उतरी है जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिय रहा कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रिय साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना हुई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खतरी ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा गुरमुख

जल थल महियल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर सिंह।

एक परवासा तुम्हारा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काड लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नजर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवां।

चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लै सो लागै।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतराई

अब निद पाई अनक जन्म बिछरत दुख पाया कर गया ले हो प्रीतम प्रबराया भणत नानक सहो है पी होसी जय पावै प्यारा तैर वेसी सूही महला पहला कर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जी हो विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबरै, बक्षे बक्षण हार जियो, अनको की जय मितड़ा, खाकर ले मर जाए जियो, बहु रंग देख पलाया,

सै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझह रजाए शब्द कमाई है।

देही हो वग खाक पमन उड़ाई है। एहो कित्ते कर अवताक महल ना पाई है। देहो दीवी अंध कोर कब महाई है। गर्भ मुसै कर चोर किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग जोत दी पाई है। लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है। सदा रहे निह काम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है। नानक मेल मलाए जे तुद पाई है। सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है। जो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम लखती टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ। जह देखो तह नाल गुर देखा लिया अंतर बाहर पाल शब्द।

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे बिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचे रंग राता गुर कै सहज सुपाई। मनमुख सद ही कूड़ो बोले बिख बीजै बिख खाए। जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए। अठसठ तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाते मल जाए।

जो मर खाक थी वाह मेरे साहिबा वाह गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ दुनिया केरी दोस्ते मनमुख दज मरन जमपुर बद्दे मारी है वेला ना लाहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम परगासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द वसारिया दूजे भाए रचन तिस ना भूख ना उतरै अन दिन जलत फिरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन निंदा भली किसै की नाही मनमुख मुग्ध करन मुह काले तिन निंदका नरके घोर पवन ए मन जैसा सेवह तैसा होवह तेहे कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना किशु ना जाए महापुरखा का बोलना हुए कित पर थाए कोई अमृत भरे भरपूर है ओ ना तिल ना तमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन सेवड़ भागी जे ओ ना मिल रहे अन दिन नाम लेन देसी रिजक संभाहे जिन उपाई मेधनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेल लए सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए।

साथ रखा उर तार मिलिया हुए न विछड़े गुर कै हेत प्यार फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार मनमुख मन न भिजई हथ मैले चित कठोर सप्पै दुध पी आईऐ अंदर विस निकोर आप करे किसे आखियै आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरै ता सच बनया शिंगार सच्चा साहु सच्चे बन जारी उतै कूड़े ना टिकन उन्ना सच ना पावे दुख ही माही पचन हम मैला जग फिरै

आगै धरी विचो आप गवाए खिंचो तान विगुची है एक सस्यों लिवलाए हौ मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहेरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण वेकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजै सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चलै ना चल दिया नाल मिण नावै नाल ना चल सी।

खुट है गुरमुख निभ नाल ए मन मूलो भुलिया जस है पत गवाई एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमति सच त्याय हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाय गुर कै शब्द मन तन रपे हर सिउ रह समाय सो सहो मेरा रंगला रंगे सहज सुपाई कामण रंग ता चढ़े जा पिर कै अंक समाय चिरीव चुने पी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटई हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर सिउ केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग में विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार नै मन हर गुण सदा रवन रहाउ गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रब आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुखे को बुझिया एक समाहे समाय सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुरचरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पह आप बचाई दर्शन हर देख।

तुझ अराधी दुख पी तुझ त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच

धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड़े है पीत आई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ ना जाई जे तुद वाल रहे ता कोई किहो आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरे ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीहो वरसे पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुए बहु खारा गुरसिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक काहुए सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस भावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाई होर निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगे नानक वेचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोले है सो थाए पाए मनमुख किस थाए ना पाई पाला ककर वर्फ वरसै गुर सिख गुर देखण जाई सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक अपाव करी गुर कारण गुर भावे सो थाए पाई रैन दिनस गुर चरण अरादी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्ति अगाई नानक का प्रभ पूर रहे हो है जा

सुतियां गुर सलाहिए उठदियां पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ तां के धुआं पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौं तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊं। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कित उपाय। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है, गुर चरणी लागे आए। अका

प्रभु दरबारा आस अंदेसा बंद पराना महर न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कशु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभु तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन जीव

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाईऐ ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जम्मै लख वार जियो साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सर्ब मैं तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां घर दसवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे भुली जे चुकी साई पीत हिंजी।

क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो इकत ढोल ना अंबड़ा हौ सद कुरबान तेरे जाऊं जियो सोना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यो लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हौ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरनिया बग बेहठे आए जियो सा धन चली सोहरै क्या मुंह देसी अगे जाए जियो सुती सुती झाल किया भुली वाकड़ी आस जियो तै सह नालो मुतीस दुखा कू त्रियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सुहागनी मैं दुहागन काई रात जियो सूही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो तुदे अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा बास जियो भाणे तख्त वडाइया भाणे भीख उदास जियो भाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो भाणे भवजल लंघी है भाणे मंझ परियास जियो।

आस जियो तू सौ अगम अतोलवा कौ कह कह कह पई आस जियो क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन भू

ताए जियो सोई दस पदेसड़ा मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो एहो मन तै कू देवसा मैं मार्ग देहो बताए।

सी चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

सुहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारु जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारु तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

मन चाहू कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाई नानक साजन को बल जाइए साच मिले घर आई घर आयड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जां रावी रंग राते अवगण मार गुणी घर छाया पूरे पुरख बधाते तस्कर मार बस्ती पंचायन अदल करे विचारी नानक राम नाम निसतारा गुरमत मिलह प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है माड़ी है तेहो लोआ सिर ताजा राम हों बिसम पई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनास्ती।

ता गुण रवै मन भावै सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवै साच पावै साच की मत क्यों टलै इशनान दान सुग्यान मज्जन आप अशल्यो क्यों छलै परपंच मोह बेकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया माथे अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले हुए पराया साहिब सो सलाही है जिन जगते पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा फिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म स कर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूजे गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तत तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेखै तिसे पाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूजे अंध बूढ़ो तंधली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वस्से कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दस्से मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भर आया दुखी भर आया जगत सबाया।

त्रिपट अगाही हर गुण गाए सदा त्रिपतासी फिर भूख ना लागे आई दह दिस पूज होए हर जन की जो हर हर नाम त्याई नानक हर

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंते रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हम मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे। शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, रव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए, सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई। हर सुख दाता।

गुरमति घट चानन होआ प्रभ रब रहिया सब थाई राम प्रभ रब रहिया सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हमें मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मलाई करते नाम नवें निध पाई।

शब्द रवहु। अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए। हर गुण गावो नारी, अनदिन भगत करह गुर आगै। सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसया घट अंतर। से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला। हर कर किरपा घर आई, भगता मन आनंद भया। हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ। निर्मल

जन निस्तरे घट घट शब्द समाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाए संत संगत सियो मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए, अनदिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गवाए, गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती,

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी, आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

हर कूड देव हो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा, हर हर आनंद भया दिन राती,

गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो अन दिन सुख माणी नित रलिया नानक तुर संजोगो सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आ

आई परम गत पाई पंच मेरे सुहाया गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे विन सतगुर मग ना पाया उजड़ पंथ भ्रमे गावारी खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता सतगुर पुरख मलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो पत्ती वाचाई मन बजी वधाई जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर सद नवतन बाल सिखाई

धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराध हो सब किल विख पाप गुआया। सहज आनंद हुआ बड़ भागी

स्वामी सर्व रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बड़ भाग।

गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वड भागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजै मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बल नाम जियो गुरमुख मिलिया सुपाई हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया फल

हर पाया प्रभ अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुई संत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुपाए अन दिन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रह लिवलाए वड्डे भाग गुरपूरा पाईए अन दिन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए भये पवित्र शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा हम मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाई नानक नाम परगासा अंतर रतन बीचारी गुरमुख नाम प्यारी हर नाम प्यारे शब्द निसतारी अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प शिंगार बनाई हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कह सोई पर की जय नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

आवहु संत जनहु गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लय मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावै चोटा खावै अंत गया पछताया। बिन नावै को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

राम। सतगुर पाए चलो हो, जीवत्या इव मरिया राम। जीवत्या मरिया पौ जल तरिया, गुरमुख नाम समावै। पूरा पुरख पाया बड़ भागी, सच नाम लिव लावै। मत परगास भई मन मानिया, राम नाम वडियाई। नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। हो मन तन देवा सतगुरै, मैं मेले प्रभ गुण तासे। तन तन गुरु वड पुरख है, मैं दसे हर साबासे। वड भागी हर पाया, जन नानक नाम वगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया, हर मार्ग पंथ दसाहा। कर आव हो चिरी विछुनिया, मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा। हौ तुझ बाजो खरी उडीनिया, ज्यों जल बिन मीन मराहा। वड भागी हर त्याया, जन नानक नाम समाहा। मन दह दिस चल चल भरमिया, मन मुख भरम भुलाया। नित आसा मन चितवै, मन तृष्णा भुख लगाया। अनता धन धर दबिया, फिर बिख पालन गया। जन नानक नाम सलाहे तू, बिन नावै पच पच मोया। गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई, मन आसा चिंत वसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुर देखत मन साधारिया। वड भागी प्रभ आए मिल, जन नानक खिन खिन वारिया। सूही संत महला चौथा, मारे हिस्वे जन हूं मैं बिखिया। जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया, दे कंचन वे वन्निया। इन हूं मैं मार विगुतिया, मोह माया वे सब कालखा। इन मनमुख मूड सजुतिया, जन नानक गुरमुख उबरे। गुर शब्दी हूं मैं छुटिया, बस आने हो वे जन। इस मन को मन बासे ज्यो नित पौंदिया, दुख रहन वे विहानिया। नित आसा आस करेंदिया, गुर पाया वे संत जनो। मन आस पूरी हर चौधिया, जन नानक प्रभ देहो मती। साडे आसा नित सुख सौंदिया, सा तन आसा चित करे राम राजिया। हर प्रभ सेजड़ी है आई, मेरा ठाकुर अगम दयाल है।

हत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन कृपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाईऐ भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख तज बहु माणा नानक दीन भग

रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो, गुण गोविंद गाओ नित नित,

नासे रहस उपजै मन घणा। मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा। होए रेण साधु प्रभ अराधु अपने प्रभ पावा। बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा। गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया। हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आवन जाना। पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा। जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई। पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा। गुर संत पाया प्रभ त्याया आया।

जी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरडाया सदा भज जगदीसरै राग सूई संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रसमाना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठाक

जीवन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवां साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिस का दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइय प्रभु ते आई है बहुड़ जोन ना आई है गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर

हर गुण निधि, हर संतन कै वासियाई राम। संत चरण गुर सेवा लागी, तिन्नी परम पद पाई राम। परम पद पाया आप मटाया, हर पूरन कृपा तारी। सफल जन्म हुआ पौ भागा,

आया सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे

मेरे प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अलपुर।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिया है अविनाशी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुआ कटिया काल की फांसी राम कटिया जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिया दिन राती लागे सहज त्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़।

तर्त सोहावी ताल सोहावा विति अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद रिध दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़ आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा गुण निदान मेरा प्रभ करता।

मैदान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ

पूर्ण भगवान अवगण को ना चितारी पतत पावन हर बिरद सदाई एक तिल नहीं पन्ने काली घट घट वासी सर्ब नवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सज्जन मेरा हौ बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जे बड़े अमर ना कोई आदि अंत मद प्रभ रविया जल थल मही अल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा ना

प्राण आधारु गुरु सतगुर कहे आजी साचा अगम बिचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख ना।

राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौ तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निध स्वामी वड भागी हर हर गाया।

चिहन है अंदर सच मुख उजला खसमे माहे समाई महला तीजा लोका वे हौ सुहवे सुहा वेश करी वेसी सहो ना पाईए कर कर वेश रही नानक तिन्नी सहो पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सो थीऐ इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सेठ साजियन बहु भित संसारा तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सच्चे अलख अपारा इकना नू तू मेल लै गुर शब्द बीचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज वेकारा जिस तू मेल है सो तुद मिलै।

लाल हुआ रसना रती गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार आवन जाना विसर गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हउ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मरिया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन महला तीजा कंता नाल मेहदियां सेती अग जलाहे जे जान है तेरे अपना ता तन दुख सहाहे नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे भावै जीवो कै मरो दूर हो ही भज जाहे पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया नावै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

0: हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हम मैं माहर मन निर्मला हर नाम उरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिनकी ये तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी जिस बजाए सो

तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ी अस होर बाहर धोती तू मड़ी अंदर विस निकोर साध भले अन्नातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग धंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया नावें नू सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

निशान नानक नाम लाहा प्रवान घर आए बजी वधाई सच नाम की मिली वडियाई महला पहला राती होवन कालिया सोपेदा सेवन

मैं तन अवगण एतड़े खसम ना फेरे चित महला पहला हौ बलिहारी तिन को सिफत जिना दैवात सब राती सुहागणी एक मैं दुहागण रात।

कृपा कर गुरमुख लेहो मलाए जन पावे नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत धर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग मह वरतै आप हर सेती प्रीत कर श्लोक महला पहला जिनी न पायो प्रेम रस कंत न पायो साव सुनिए घर का पौना।

सो सोभा पाई हमें विचों दूर कर सच मन वसाई सच बाणी गुण उच्चर सच्चा सुख पाई मेल भया श्री विछुनिया गुरपुरख मलाए मन मैला इव शुद्ध है हर नाम त्याय सलोक महला पहला काया कूमल फुल गुण नानक गुप समाल इनी फुली रौ करे अवर के चुनिय है डाल महला दूजा नानक तिना बसंत है जिन घर वसया कंत जिनके कंत दिसापुरी से अहनस फिर जलंत पौड़ी आपे बख्शे दया कर गुर सतगुर बचनी अन दिन सेवी गुण रवा मन सच्चे रचनी प्रभ मेरा बेअंत है अंत किने ना लखनी सतगुर चरनी लग्या हर नाम नित जपनी जो इच्छा सो फल पाए सी सब घर विच जचनी सलोक महला पहला पहल बसंत आगमन पहला मौल्यो सोए जित मौल्या सब मौली है किस ना मौल्यो कोए महला दूजा पहल बसंत आगमन तिसका करहो विचार नान

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा, काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी, सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया, रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती, किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले, सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया।

वो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्म बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो ना हारह ताल जो जान पासा सूही ललत कबीर जियो एक कोट पंच सिकदार।

सह की सार सुहागण जाने, ताज अभमान सुख रलिया माने, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देख न सुने अपाखै, सो कत जाने पीर पराई, जां कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मैं मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किश होआ सब किश तुझते, तेरी सब असनाई।

रहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

अलख अपेओ रहाओ, माया मोहतर कटी नार, पूंदी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात ना हुए, एक एक नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निसतारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज त्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सके, खिन सत गुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसर हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हो मैं मेट चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सियों, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया, दूजा भाऊ ना देई लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी,

दया पत दाता क्या एह जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है मनमुख बंद विचारी सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाने से मनमुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वस्सै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाउ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब मह एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई अन दिन लागे सहज ध्याना रहाउ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभमाना जब अपनी जोत

लाई चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पावे है मानत पाहे निदाना बलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हौ तिन बलिहारे जिन हर मन बसाए हर जन को मिलिया सुख पाइए हर गुण गावे सहज सुपाई रहाउ सदा रंग राते तेरे चाय हर जीव आप वसे मन आए आपे सोभा सद ही पाई गुरमुख मेले मेल मलाई गुरमुख राते शब्द रंगाई निज कर वासा हर गुण गाई रंग चलूले हर रस पाई एहो रंग कदे न उतरे साच समाई अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा बलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हो मैं माया शब्द जलाई दर साचे गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर न काजा अन दिन आनंद हुए मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरन को समसर वेख बहुड़ ना मरे ना जम पेख घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान सद ही लागा सहज ध्यान अन दिन गावे एको नाम इस जुग में वडे आई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखा तह रहया समाई।

नाथ चम चमरे हर उदरियो परियो सरना प्रव दीन दयाल भगत भव तारन हम पापी राख पपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना बलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति शरणागत पुरख अजन्मा कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकुर हम पात्र हीन अकर्मा मेरे मन भज राम नामे रामा गुरमत हर रस पाईऐ होर त्यागो निफल कामा रहाउ हर जन सेवक से हर तारी हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिया वड्डे कर्मा नाम हीन त्रिग जीवते तिन वड दूख सहमा होए फिर जोन पवाई है मंद भागी मूड अकर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड कर्मा गुर सत गुर नाम दरड़ाया जन नानक सफल जनम्मा बलावल महला चौथा हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा करना सकह प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तरा मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रवतारी मिल सतगुर पार परा रहाउ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मत्ती जस करा तुमरे संग लगे से उदरे ज्यो संग काष्ट लोहो तरा साकत नर हो छी मत मद्दम जिन हर हर सेव ना करा ते नर भागहीन दोहचारी होए जन्म मोए फिर मरा जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुर सरा दुर्मत मैल गई हर भजिया जन नानक पार परा बलावल महला चौथा आवहु संत मिलहु मेरे भाई मिल हर हर कथा करहु हर हर नाम बोहित है कल युग खेवट गुर शब्द तरहु मेरे मन हर गुण हर उच्चरहु मस्तक लिखत लिखे गुण गाय मिल संगत पार परहु रहाउ काया नगर मह राम रासी उत्तम क्यों पाईऐ उपदेश जन करहु सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिले अमृत हर रस पीयो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिख रसो राम नाम रस राम रसायन हर सेव हो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो बलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी गुर सत गुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेव हो दिन सब रैनी हर जन देखो सत गुर नैनी जो इच्छो हो सोई फल पाव हो हर बोलो हो गुरमत बैनी रहाओ अनक उपाव चित भी है बहु तेरे सा हुए जे बात हुएनी अपना भला सब कोई बंश है सो करे जे मेरे चेतना चेतैनी मन की मत त्याग हो हर जन एहा बात कठैनी अन दिन हर हर नाम त्याग हो गुर सतगुर की मत लैनी मत समत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जंतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी।

तो कर कृपा मोहि मार्ग पावहु साध संगत कै अंचल लावहु क्यों तरिय बिख्या संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाउ पवन चलारी माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोग ते रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा हमे पचे दीपक देख पतंगा सगल श्रृंगार करे नहीं पावे जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिस महलाल गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल जिन चाख्या तिस आया साद ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बलावल महला पंजवां सर्ब कल्याण किए गुरदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रव्या आप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जितै कितै दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बलावल महला पंजवां सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण।

एक रूप सगलोपा सारा आपे बंज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइए तत

आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार विजने बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी, रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सबे अपना, कमन सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लई मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटा।

गुर पूरा वडभागी पाई मिल साधु हर नाम ते आई है पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना किलविख काटे पज गुर के चरना रहाउ अवर कर्म सब लोका चार मिल साधु संग हुए उदार सिमरत

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भये मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुरे आणिया। बिलावल महला पंजवां, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साख नर थीवे। राम नाम होआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बुलावल महला पंजवां, कर चौथा दुपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हिरदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाता जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवां, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद सम्हारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आरजा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तिण त्रे भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सो काल रहाव, साध संग भजिए गोपाल। गुण गावत टूटे जम जाल, आपे सतगुरे आपे प्रतपाल।
नानक जाचै सादरवाल। बलावल महला पंजवां। मन मैं सिंचहो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बलावल महला पंजवां। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज घर आया। रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माही त्याई। नानक गुरपुरे

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारे। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत किनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा ने धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझे। बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर से वो अपना काहे फिर हो अपागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह ताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी। अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे कीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

हरे हर हर हर हेत उठत बैठत सोवते हर हर हर चेत रहाउ पंच चोर आगे भगे जब साध संगेत पूंजी साबत घणो लाभ ग्रह सुबा सेत निश्चल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत परम पलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया साध संग हर हर अमरेत बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना एतो बिरथारी मिलत संग सब भ्रम मिटे गत पई हमारी जा दिन पेटे साध मोहे वा दिन बलिहारी तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी रहाउ एत सडाई मोहे ते इतनी दृढ़ तारी सगल रेन इह मन भया बिनसी अपतारी निंद किंद पर दुख नाए खिन मह जारी दया मया अर निकट पेख नाही दूदारी तन मन शीतल पये अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चार।

सर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदाहरण साध प्रभ इन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते काट हो जम जाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। बलावल

जमदूत छड जाए तुमरी कृपा ते छूती है बिनसै अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाउ खोजत खोजत खोजिया नामै बिनकूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर जित जित लावो तित तित लगह स्यानप सब जाली जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बलावन महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहा हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राखिया पई भ्रम पसना नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारियां अग्नि मह जाल संत जना का शोहरा इस चरणी लाग माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाउ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखू समान भगत जना का लूघरा ओड लगन ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत स्यों मुख जोरे है अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे इत उत छूटे सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई दर्शन भेट तसाद का नानक गुण गाई बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तार हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो संत जना की रेणुका ले माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो पाम मनोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास नह विसरे अनकत है ना तामो सफल दर्शन गुर पेटी है मान मोह मटावो सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया जिस जन होवा साध संग तिस भेट हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाउ सरन परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया मत भूलोह मनुख जन माया परमाया नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया बलावल महला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक सिदर मन मै ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ ताज रचे जे आनस्यो सोर लिये खे रहाउ सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो ताज कूड़े ने जिन अनक एक बहुरंग किए है होसीये कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने
दास दास को दासरा नानक कर ले। बलावल महला पंजवां। एक टेक गोविंद की त्यागी अनियास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास। जन का नाम आधार है प्रभ सरनी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपार, दीन दयाल कृपा निदे सास सास सुमार। करनहार जो कर रहया साई वड्याई, गुरपूरै अपदेसिया सुख खसम रजाई। चिंत अंदेसा गणत तज जन हुक्म पछाता, नह बिनसै नह छोड़ जाए नानक रंग राता। बलावल महला पंजवा। महा तप्त ते भई शांत, परसत पाप नाठी अंधकूप मैं गलत थे काढे दे हाथे। ओए हमारे साजना हम उनकी रेन, जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवां सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइय ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

ना जापै हर हर हर हर जापिया अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपुरा जिस भेटिया ताकै सुख प्रवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु न विसरे सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करहु प्रभ ताको लावहु सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु न विसरे प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय भरमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत त्रिपतासिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊं तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊं कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही। बलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक परिया साध संग हर हर गुण गाव। बलावल महला पंजवा। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तो छुट्टै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस स्यो तेरा भेद, बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिय नाम, कथा कीर्तन हर अत कन।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखू

धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार, भगत अराध है एक रंग गोविंद गोपाल। राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार, शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई। नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई, बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

योग जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवा दुपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

रह राखिया अपनी करमया रहाउ बाह पकड़ प्रभ का दिया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया बलावल महला पंजवा कर तर मस्तक थापिया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ता की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन कन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कह जो कह सो करना। पय प्रसन्न गोपाल राय पहु किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे। जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ। करन कारण समरथ है किस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बाँचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है। साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुरकीन। जी सगल दयाल भय हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहे हो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद में पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरे साथ।
ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ, ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਰਕ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ। ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ, ਭਉ ਨਾਠਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ, ਫਿਰਤੇ ਪਹਿ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ, ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ, ਹਰ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤ।

पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखियन पार

रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी।

दाती मिल संगत हर गुण गाय रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्स रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाई सबहू तले तले सब ऊपर ए

नमस्कार दंडौत वंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एहु मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करहो सोई पल हमरे देख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन।

मन पूर रही दिन अर रात रहाओ कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन पे जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे सरन सुख दाती।

पर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा

सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रहया समाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेटले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मनुख मनुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौं क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आगे क्या कहता रहाओ। अनबोले को तुही पछान है, जो जीन मह होता। रे मन काए कहां लो डह कह, जो पेखत ही संग सुनता। ऐसो जान भये मन आनंद, आन ना बियो करता। कहो नानक गुरु।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही

जरा मरा कछ दुख न व्यापै, आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुर ते पाइयै एहो निदान। जन्म मरण की कटियै फांसी, साची दर

या सगल जहान मिलावन महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आही हर गुण गावत परपकार नेता तिस रसना का मूल किछ नाही रहाउ कुल समूह उदरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही बिलावल महला।

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आज्ञा सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरल सम्राट अकात सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राख है अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीसै इहो पदार्थ बड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे।

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरण समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वशल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान भ्रम पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास आराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दूए थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहे आपर पूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझे

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर जिसमें प्राणी गलत पया सरन परे न

राखी पै भंजन ऊपर करते मान भई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढे शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवे हर गुण है बखान बलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल कार्य सगल सवारी सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाओ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल कंठ लाए राखे जन अपने उधर लिए लाए अपने पाल तही सलामत मिल घर आए।

अपार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदय धर मन ध्यान रहाउ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जाका किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जाको तिन्ही पाया इहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान बलावल महला पंजवां राख लिए।

घर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा एक है निर्गुण उग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर खुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ दराऊ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवा तुम समरथा कारण करन ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं किरपाल किरपा नित जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवा ऐसी कृपा मोहे करो संत है चरण हमारो माथा नैन दर्स तन तूर पर हो रहाओ गुर को शब्द मेरही अरे बासे हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच नवार हो ठाकुर सगलो भरमा होम जरो जो तुम करो सोई भल मान है पावन दुबदा दूर टरहो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संगले मोहे उदरहो बलावल महला पंजवा ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा

जन चर रज मुख माथे लागी हासा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवा ज्यों भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाहीं कोई पहुँच ना साको।

जानहु हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जीओ नजर निहाल बिलावल महला पंजवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लात निद निदान।

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतस पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जारो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारू, जन नानक प्यास

कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचरे हर की जया बलाव महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए। कहो नानक गुर पूरा पेट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो परसा।

राग बलावल महला पंजवां कर तेरवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवे हावे हार कजर बस्तर आभरण कीने उडीनी उडीनी उडीनी कब करया वैरी रहाउ सरन सुहागन चरण सीस धर लालन मोहे मलावहु कब करया वैरी सुनो सहेरी मिलन बात कहो सगरो अंग मटावहु तव कर ही लालन पावहु कब रस मंगल गुण गावहु आनंद रूप त्यावहु नानक द्वारे आयो तव मैं लालन पायो री मोहन रूप दिखावे अब मोहे नींद सुहावे सब मेरी तिखा बुझानी अब मैं सहज समानी।

जाई दर्शन पावत ही राच्यो नाथ ही सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो आलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अनते टूटी है रिखते छूटी है मन हर रस कूटी है।

जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावै मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावै कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावै बलावल महला नौवा जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाउ तीर्थ करै व्रत पुन राखै नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानु साच कहत मैं जाको।

पछानो भगत हीन जो प्राणी। कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर यह भेद बतावे कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभु के गुण गावे बलाव।

देखै सब सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, बिन भै पै भगत ना होई, शब्द रते सदा सुख होई, ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम, गुरमुख पावस रस रस मान रहाउ, ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई, कथ कथ बाद करे दुख होई, कथ कहने ते रहे ना कोई, बिन रस राते मुक्त ना होई, ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई, मनमुख कथनी है पर रहत ना होई, नाम भूले थाओ ना कोई, मन माया बंदेओ सर जाल, घट घट व्याप रहो बिख नाल, जो आंजै सो दिसै काल, कारज सीधो हृदय संभाल, सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई, मनमुख होमै पत गवाई, आपे करतै भगत कराई, गुरमुख आपे दे वडे आई, रैन अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कशोत, वेद पकारै भगत सरोत, सुन सुन मानै वेखै जोत, शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं, गुरमुख शांत उत्तम करामं, मनमुख जोनी दुख सहामं।

को दूजा देख कहो पावे मन सोए, नानक कह अवर नहीं कोई। बलावल महला पहला, मन का कहया मनसा करे, इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते त्रिपत ना आवे, त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना,

आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेविय अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जो

चूकै अभमानै गुरमुख नाम सदा सदा बखानै सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सतगुर मिलै वड्डी वड्याई।

गुरमुख माथ माथ तत कढ़ैया लाल जवे हर नाम परगासिया भांडै भाउ पवै तिथि अइया दासन दास दास होए रही है जो जन राम भगत निज पइया मन बुद्ध अर्प धरो गुर आगै गुर प्रसादी मैं कथ कथैया मन मुख माया मोहे व्यापे इहो मन तृष्णा जलत खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया इहो मन नाचै सत गुर आगै अनाद शब्द धुन तूर वजैया हर हर उस्तत करै दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चोऐ अत निर्मल जिन पिया तिन्ही सुख लहिया मन हट कर्म करै अभमानी ज्यों बालक बालू कर उसरैया आवै लहर समुंद सागर की खिन मह भिन भिन टह पैया हर सर सागर हर है आपे इहो जग है सब खेल खलैया ज्यों जल तरंग जल जल है समाव है नानक आपे आप रमैया बलावल महला चौथा सतगुर परचै मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन भस्म दरड़ैया अमर पिंड भए साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहिया कृपा करहु मधुसूदन माधव मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाउ तजै गिरहस्त भया बनवासी एक खिन मनुआ टिकै ना टकैया धावत धाए तदे घर आवै हर हर साधु सरन पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करै नहीं बूझै गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर होवा मन दह दिस चल चल गमन करैया पर पवन करै बूझै नहीं कृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिख है बहुतेरे मन मांग है रिद सिद्ध चेटक चिटकैया तृप्त संतोख मन शांत ना आवै मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंत उपैया साधु सरन परै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमयार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन धना जत सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वचन अंगीकार करैया नानक सरन परे जग जीवन हर हर कृपा धार रखैया बलावर महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा।

हौ लोट पोट होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिरौं सब देश दसंतर। मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देऊं गुरे आगे। जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया, कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा। हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया, मस्तक काट देऊं चरना तल। जो हर प्रभ मेले मेल मलैया, चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है। गुण कामन कर हर प्रभ लहिया, भगत वचन ओआ को नाम कहियत है। शरण प्रभु तिस पाछे पैया, थिमा शिंगार करे प्रभ खुशिया। मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस भोग करे प्रभ मेरा। हम तिस आगे जियो कट कट पैया, हर हर हार कंठ है बनिया। मन मोती चूर वड गहन गहनैया, हर हर शरदा सेज वछाई। प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया, कह प्रभ अवर अवर किश कीजै। सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया, कियो शिंगार मिलन कै ताई। प्रभ लियो सुहागन।

नानक हर गुर सरण समैया बलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखे शरदा मन पूरी ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया मिल मिन सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिसे आगे सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख पुलानी मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यों बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर ना पावे बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे हौ तिस विटहो बल बल घुम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सत गुर सरन पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल ना पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवे प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया कर कर किरिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसवा कह कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा तारी बाहा पकर नानक कड लैया राग बलावल महला पंजवा अष्टपदी घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही ताजे आन सरण गही रहाओ प्रभ चरण कमल आपार हौ जाऊ सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे ताजे आन कतह ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उदार पै तरे सागर पार मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत तज गए पाप विकार हर मिले प्रभ निरंकार प्रभ पेखिए बिस्माद चख अनद पूर्ण साध नह डोलिए इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पेख नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जा की महा बिखड़ी कार ता की मित न जान कोए जल थल मही अल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मन सापूर बलाव महला पंजवा प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग कर दया ले हो नर लाए नानका नाम त्याई।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो मात पूत हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है काम बंद ज्यो ग्रस्त

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देख।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आवह क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पा खंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर न दूजा सिर जनहारा, तृतीया

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ किसे आखा दूर। चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा,

मूक शरीर सात समुंड भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अराधे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाऊ किसमें मनुआ रहया लिबलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाऊ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबल।

फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागै कबह ना सूता, जागत जागर

पत खोए, डर मह घर घर मह डर जाने, तख्त नवास सच मन पाने, चौदस चौथे थावह लह पावह, राजस तामस सतकाल समावे, ससियर कह कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस भवन पताल समाए, खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बूझो हो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत तिहो लोई, कर कर वेख करता सोई, गुरते दिसै सो तिस ही माहि, मनमुख भूले।

भिनस बनासा फूटे खपर दुबदा मनसा ममता जालते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बलावल महला तीजा वार सत कर दसवां।

आप अपाए सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: वार वार
1: दिन सनहण तिवै संसार आवागौन किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरख आपे सिष्ट साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए पर पंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सो जी पाए पर पंच चूकै सच समाए जाकै

काय परमे फूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे तां दर सूझै एक

सकै कोई। साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई, किसते ऊपर नाही कोई। कौन डरे, डर किसका हो।

विचार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर स्यों रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंदन वेल सुंदर देख फिर साधारिया।

आय मन सुख सुमान राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सुहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग।

तो आया नित हर हर जापै राम मेरे हर प्रभ भावै सो करै हर रंग हर रापै राम जन नानक सहज मलाया हर रस हर त्रापै राम मानस जन्म हर पाईऐ हर रावण वीरा राम गुरमुख मिल सोहागणी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यों जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै बड़ भाग गुर पूरै वेख लिया नानक हर लिव लाग शंत मेरा हर प्रभ रावण आईया हौ मैं बिख झागे राम गुरमत आप मटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरै वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरै प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुर पूरै हर मेलिया हर रस अघाई राम जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु साबास है जिन हौ मैं मारी राम जिन वड भागिया वड भाग है हर हर पुर तारी राम जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मिल संत आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करन कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सुलखणा हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैण अमाहा तह रोग सोग ना दुख व्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसे भावह एक निमख पलक ना त्यागी है।

धारी मन प्यारी महा दुरमत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा।

सुख सागर प्रभ भेटे है, नानक सुखी होत एहो जीओ संत। सुख सागर प्रभ पाई है, जब होवे भागो राम। मानन मान वंजाई है, हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान पचातुरी, दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पाओ सरनाई राम राय, फिर हुए सुहागो राम। सो प्रभ ताज कत लागी है, जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवे ज्ञान मती, दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ त्याग करे, कहो कत ठहराइए राम। नानक भगत पाओ कर दयाल की, जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उच्चर है, बल गईये दोहचारन रसना राम। प्रभ भगत बछल।

नहसीवहि काया काक ग्रस नाराम प्रम मोहि दुख ना जानहि कोट जोनी बस नाराम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमाराम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिय हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास तिन्हड़े अपने।

निदान सुखदाता तेरे मन वसै होमै जाए अभमान नानक नदरी पाईए अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किछ हर करावे सो ओहि करहे सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर के बल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले कार।

कडिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान न लागे दुख विचकार कमावनी दुख वरतै दुख आगै करमी सतगुर भेटियै ता सच नाम लिव लागै नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाउ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार भणत नानक सुनो जन पाई सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंधा नित मार दूजा

हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुवार पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहु भगत जना को सनमुख होवै सो हर रास लई वेमुख भस पाहु हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जगाती तिन्ना नेड़ ना जाहु जन नानक हर नाम धन लद्या सदा वे परवाह श्लोक महला तीजा इस जुग मैं भगती हर धन खटिया होर सब जगत परम भलाया

आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा भ्रम भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होया।

हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिन का आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी, अंतर निर्मल नाऊ। अन दिन जागे कदे ना सोए, सहजे अमृत पियाऊ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाऊ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाऊ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर धन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवे, ता कोई किहो मंग लए। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर धन जोर कीतै किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए, तिस हर धन की वंड हाथ आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया, इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही, किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे, तिसका मुंह

हर सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द विचार नानक अवर ना सुजई हर बिन बख्शन हार महला तीजा हम मैं माया मोहनी दूजे लगे जाए ना ही मारी ना मरे ना ही हट बकाई गुर कै शब्द पर जाली है ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाई पौड़ी सतगुरु।

का अपमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियो सब जहान जे सतगुर नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे वेमुख होवे सो फिरे भ्रिष्ट थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पए।

मन आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लई।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे, आवह ना जाहे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

आप न बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर रामे रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अजो बिकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, पवजल निद भारी। राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाओ। बिखै बिखै की बासना, तजी न जाई। अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जोबन गया, किस

को जन कहा करह बेचारी रहाउ त्रिग तन त्रिग तन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी जिस माया को दृढ़ कर रखो बांधे आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप धर्म ज्योत प्रखोतमो जा कै रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजहो जग जीवन राम रहाउ आवत कछु ना दिसै नह दिसै जात जह उपजै बिनसै तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख

जाओ, काशी ते धुन उपजै, धुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता, धुन कहां समाई, त्रिकुटी संध मैं पेखिया, घट हूं घट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी, घट माहे त्यागी।

अवल चरण कमल जा कहर दे बस है सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निद ताके सहज सहज जस बोले देव रहाउ तब एह मत जो सब मह पी।

वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइयै, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइयै, मेरे मन हर जप हर नित पड़ैयै, हर बिन को मार जवाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़ैयै, रहाउ हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरइयै, हर एको बोलै हर एक बुलावै, गुर पूरै हर एक दिखइयै, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरइयै, निह कपट सेवा कीजै हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पइयै, जिस दै वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा धिआइयै, जन नानक सो हर नाल है तेरै, हर सदा धिआए तू तुद ले छडइयै, गोंड महला चौथा, हर

राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी मह जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटे कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

मत को परम भुले संसार गुर बिन कोई न उतरस पार रहाओ भूले को गुर मार्ग पाया अवर त्याग हर भगती लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गुर पूरे की बेअंत वडाई गुर प्रसाद ऊर्द कमल बिगास अंधकार मह भया प्रगास जिनकी आसो गुर ते जानिया गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया।

के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाय, पार ब्रह्म गुर रहया समाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है वड भागी।

संत जना मिल बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम रहाओ। राम राम धन संच भंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए।

नानक दास गोंड महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करह सलाम लूट ले साकत पत खोह है सात जना पग मल मल धोह है पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याई तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेतन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाऊ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद।

नानक निस्तरी है। गोंड महला पंजवां गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार, होए रही है सगल की रीना। घट घट रमैया सब महचीना, इन बिद रमहु गोपाल गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को एह सुआओ। ताज अभमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर स्यो मन रंग। जिन तू किया तिस को जान, आगे दरगाह पावे मान। मन तन निर्मल होए निहाल, रसना नाम जपत गोपाल। कर कृपा मेरे दीन दयाला, साधु की मन मंगेर वाला। हो दयाल देहो प्रभ दान, नानक जप जीवै प्रभ नाम। गोंड महला पंजवां धूप दीप सेवा गोपाल। अनक बार बंदन करतार, प्रभ की शरण गही सब त्याग। गुरसो प्रसन्न भये वड भाग, आठ पहर गाइय गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। हर गुण रमत भये आनंद, पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद। कर कृपा जन सेवा लाए, जन्म मरण दुख मेट मलाए। कर्म धर्म एह तत् ज्ञान, साध संग जपिए।

गुण महला पंजवां संत का लिया तर्त बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभात संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा तिसका पतन होए जिस कौ राख सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक कौ उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवां नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहि आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शे।

नारायण साध सांग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राख राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है साध संग जपै निरंकार।

जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवा।

लागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां महा।

अमराव पतियाई दुष्ट अहंकारी मार पचाई निंदक कै मुख कीनो रोग जय जय कार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जप है गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पए सगल थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बे परवाहे सगल पै मिटे जाकी सरन निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जान उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभिमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा। कहो कबीर शूशा घट बोले भरिया हुए सो कबहू ना डोले। गोंड नरु मरै नर काम न आवे पशु मरै दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट किसे तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरे तरै ध्यान वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद। गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ। ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत न को उपाई रहाओ। ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड न रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती। ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस। गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान। कूच बिचारे पुए फाल
या मुंडिया सिर चढ़बो काल, एहो मुंडिया सगलो द्रब खोई, आवत जात नाक सर होई, रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाही, मुंडिया अन दिन तापे जाहि, एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट, मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूडत की टेक, सुन अंधली लोई बे पीर, इन मुंडियन भज सरन कबीर, गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारी का हुए बनास, आगे नरक इहा भोग बलास, एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी, रहाओ सुहागन गल सो है हार, संत को बिख बिगसे संसार, कर शिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिरे बेचारी, संत भाग ओ पाछे परे, गुर प्रसादी मारू डरे, साकत की ओह पिंड परायण, हमको दृष्ट परे त्रिख डायण, हम तिस काबो जान्या पेव, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव, कहो कबीर अब बाहर परी, संसार के अंचल लरी, गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही, आवत पहिया खुदे जाए, वाके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागे दोख, धन सुहागन महापवीत, तपे तपीसर डोले चीत, रहाओ सुहागन किरपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती, साधु कै ठाडी दरबार, सरन तेरी मोको निस्तार, सुहागन है अत सुंदरी, पग नेवर सनक सनहरी, जौ लग प्राण तऊ लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे, सुहागन भवन त्रै लिया, दस अठ प्राण तीर्थ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है शेदे, सुहागन उरवार ना पार, पांच नारद के संग बिदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे, गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल ना टीकावे, साधु बिन ऐसे अबगत जावे, जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रह मह खेते, रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि परोइए, कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अबगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपरेत होई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दोहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना, गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार, रहाऊ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतिए परचे साचे, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजारह सोदे, पांच पलीत है कौ पर बोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री कै जतन नाम उच्चरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरुदेव अत रूप विचखन, गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव, धन अनाद भूखे कवल टहकेव, धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी,
ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਏ ਅਨਾਦ, ਜਪੀਐ ਨਾਮ ਅੰਨ ਕੈ ਸਾਧ ਰਹਾਉ, ਜਪੀਐ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਅੰਨ, ਅੰਬੈ ਕੈ ਸੰਗ ਨੀਕਾ ਵੰਨ, ਅੰਨੈ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਰ ਹੋਵੈ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਮਹਿ ਆਪਣੀ ਖੋਹੈ, ਛੋਡਹਿ ਅੰਨ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾ ਓਹੇ ਰੰਡ, ਜਗ ਮਹਿ ਬਖਤੇ ਦੂਧਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਪਤੀ ਖਾਵਹਿ ਬਟਕਾ ਸਾਰੀ, ਅੰਨੈ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਕਾਲ, ਤਜੈ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਅਨਾਦ ਠਾਕੁਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੇਉ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਸਮੇਦ ਜਗਨੇ ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ, ਪਰਾਗ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਤਉ ਨਾ ਪੁੱਜਹਿ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਾਮਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਹੈ ਭਾਜਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਰਹਾਉ, ਗਯਾ ਪਿੰਡ ਭਰਤਾ ਬਨਾਰਸ ਅਸ ਬਸਤਾ, ਮੁਖ ਬੇਦ ਚਤਰ ਪੜਤਾ ਸਗਲ ਕਰਮ ਅਸ਼ਤਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਖੱਟ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਿਤਾ, ਸੇਵਾ ਸਖਤ ਸੰਵਾਦੰ ਮਨ ਛੋੜ ਛੋੜ ਸਗਲ ਭੇਦੰ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦੰ ਭਜ ਨਾਮਾ ਤਰਸ ਭਾਵ ਸਿੰਧੰ, ਗੋਂਡ ਨਾਦ ਭ੍ਰਮੇ ਜੈਸੇ ਮਿਰਗਾਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ ਵਾਕੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੀਰੋ, ਰਾਮ ਛੋੜ ਚਿਤ ਅੰਤ ਨਾ ਫੇਰੋ ਰਹਾਉ, ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਹੀਰੈ ਪਸੁਆਰਾ, ਸੋਨਾ ਗੜ ਤੇ ਹੀਰੈ ਸੁਨਾਰਾ, ਜਿਉ ਬਿਖੀ ਹੀਰੈ ਪਰਨਾਰੀ, ਕੌਡਾ ਡਾਰ ਤੇ ਹੀਰੈ ਜੁਆਰੀ।

तरबे न जानो बाप बीतला बाहां दे रहाउ नर ते सुर होए जात निमख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग को जीत्यो सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैक टकावो मोहे तेरे नाम अविलंब बहुत जाने उदरे नामे की निज मत ए गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलप है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाउ जैसे गाय का बादशाह सूतला थन चोखता माखन कूतला नाम देहो नारायण पाया गुर भेटत अलख लखाया जैसे बिखै हित पर नारी ऐसे नामे प्रीत मरारी जैसे तापते निर्मल कामा

की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब भरमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमह रहाओ हर हर नाक्ष हरे प्राण अजय मलकियो बैकुंठ थान सुआ पढ़ावत गनका तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपटह भरी सिमरन द्रोपत सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली कौ दिया प्रणवै नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गोंड पैरों पूत सीतला तावे खर बाहन उहशार उड़ावे हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो रहाओ शिव शिव करते जो नर त्यावे बर्द चढ़े डौरू डमकावे महामाई की पूजा करे नर सह नार हुए अवतरे तू कहियत ही आद पुहानी मुक्त की बरिया कहां छपानी।

नामे सोई सेविया जह देहुरा नाम सीत। राग गुण बाणी रविदास जीओ की कर दूजा एक ओ अंकार सतगुरु प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे ता के सेवक को सदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राण जप मुकंद मस्तक निशान। सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल धन लादी। एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार। मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जोग तार। उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपा लीने कीट दास। कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहू की। गोंड जे हो अठसठ तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पुजावै। जे हो कूप तटा देवावै करे निंद सब बिरथा जावै। साधका निंदक कैसे तरै सर पर जान हो नरक ही परे रहाओ। जे हो ग्रहण करे कुल खेत अर्पे नार शिंगार समेत। सगले सिमरत सर्वनी सुने करे निंद कवने नहीं गुने। जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना सौंडे करे निंद बहुजोनी हांडे। निंदा कहां करो संसारा निंदक का प्रगट पाहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सधारिया। जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना। कोई नाम जपै जप माली लागे तिसे त्याना। अब ही कब ही किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गति हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी। कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले। लोभी जियड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले। मरन लखाए मंडल मह आए जीवन साजह माई। एक चले हम देख है स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देव है अंते होए सखाई। राम कली महला पहला सर्ब ज्योत तेरी पसर रही। जह जह देखा तह नरहरी जीवन तलब नवार स्वामी। अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाओ। जह पीतर घट पीतर बसिया बाहर काहे नाही। तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर आपे सर्ब रहया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तह रहया समाई। अंतर सहसा बाहर माया नैनी लागस बाणी। प्रणवत नानक दासन दासा परता पेहगा प्राणी। राम कली महला पहला जित दर वस है कवन दर कही है। दरा पीतर दर कवन लह जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह किन बिद सागर तरिय जीवत्या नह मरिय रहाओ। दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेसा दोए पट जड़ी। माया जल खाई पानी घर बांधिया सत कै आसन पुरख रह किंते नामा अंत ना जानिया। तुम सर नाही अवर हरे ऊंचा नहीं कहना मन मह रहना।
आपे जाने आप करी, जब आसा अंदेसा तब ही, क्यों कर एक कह, आसा भीतर रह नरासा, तो नानक एक मिले, इन बिद सागर तरी है, जीवत्यां इयों मरी है, रहाओ दूजा, राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी, बाजै लोक सुने, पत झोड़ी मंगन कै ताई, भीख्या नाम पड़े, बाबा गोरख जागे, गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाउ, पानी प्राण पवन बंद राखी, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधक अर जोगी जंगम, पीर पुरुष बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा, ता मन सेव करे, कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह, ऐसे भगत मिल है जन नानक, तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला, सुनमा शिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले, ऐसी जुगत जोग कौ पाले, आप तरह सगले कुल तारे, सो अवतूत ऐसी मत पावे, अहंस सुन समाध समावे, रहाउ, भिख्या पाए भगत पै चले, हुए सो तृप्त संतोख अमुले।